आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका हृदय से स्वागत करते हुए हम चला रहे हैं ये प्यारा गीत इस तरह से है।

भूले अफसाने फिर से याद आए। रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ ये गीत हमने पेश की आपके लिए। उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए ये गीत हमने चलाए थे, आज फिर याद हो गया, हमने सोचा फिर आपको सुना दूँ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है बजरिया के बीच। बस सुनिए लता जी की हाहाकार आवाज़।

की एक्ट्रेस 60s का। बाद में वो कहाँ चली गई, हाँ पता चला अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। रायश्री का ये फिल्म है और एक्टर इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, शायद याद हो जाएगा बाद में क्लीन। लेकिन चलो वो गीत तो आपको सुनाते हैं जिनकी आंखों को देखकर बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे।

तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया। रफ़ी साहेब को लता जी आपको सुनाए ये गीत हमने निकाले हैं आप ही के लिए शुभकामना के साथ। लीजिए आप ही के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

बन के पंछी गाए प्यार का तराना। लता जी और साथी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए, ये एक बहुत पुरानी गीत है। जी हाँ, बहुत पुरानी गीत है, लेकिन इसे जितने बार भी सुना जाए लगता है हाल ही में रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है कि यही लगेगा कि ये गीत हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है।

दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर फिल्म मिस बॉम्बे में से निकाल कर हंसराज बहल के साज पर हमने पेश की आप ही के लिए। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुन ही हैं तो चलिए हम आपको मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का एक गीत सुनाते हैं।

मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए दो होंठ हिले किसी ने मुझे ऐप की कि गंगा, ये गीत तो आप अभी चलाए चुके हैं। हाँ, बात थोड़ी सी सही है, दरअसल में वो भी लता जी की थी। जी हाँ, वो लता जी नहीं, वो भी मुकेश का था और धुन एक ही है लेकिन शब्द अलग है। वो था ऐ प्यार मुझे रो लेने दो और ये था दो होंठ हिले। मुकेश जी की आवाज़ में दोनों गीत गाए गए हैं मुकेश द्वारा, लेकिन शब्द अलग है, धुन वही है। तो यही बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विभिन्त हेल खुए लो इस तरह हमके नाम आखे तो नाम लेवे के बाकी तुरंत कान बहुत तेज है और दिमाग बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, चलो सुनते हैं लता जी और सिर्फ लता जी है।

जी हाँ, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत। और यहाँ तक मेरा ख्याल है यह फिल्म नौशेरवान आदिल का ये गीत हमने पेश किया है। इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत है।

0: मेरी आवाज़ के पीछे चले आओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश किए। जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं लता जी की आवाज़ में एक बार फिर।
1: शर्मा
0: नहीं रफ़ी,

फिल्म शहनाई निगतिन 64 का ये फिल्म है और हमने पेश की इस फिल्म में से ये गीत निकाल कर। तो हाँ, www.fm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप हैं तो मैं हूँ, और जब आप नहीं होंगे तो फाउन हिंदुस्तानी भी नहीं रहेगा रेडियो, तो आप ही से हम सब है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है इस तरह से।

सनसना सनसना सनसनन लता जी और साथ ही मोहम्मद रफी के साथ ये गीत हम पेश किए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये है उदित नारायण जी।

उन्नील नारायण जी की आवाज में हम ये गीत आपको सुनाएं, मेरे लिए तूने तुम्हें रब ने बनाया है, और शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से।

अरे वाह क्या बात है, एसडी बर्मन के साज पर फिल्म बम्बई का बाबू में से निकाल कर लता जी की आवाज़ में हम पेश किए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं वो माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। सुनिए इस तरह से।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस ये गीत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने निकाले फिल्म जिंदगी और तूफान में से निगती फैफन से 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर इस गीत में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं तो मैंने ढूंढा तो पता चला लिखने वाला है राम अवतार त्यागी जी कोई लिखने वाला है लिरिसिस्ट है स्क्राइबर है राम अवतार त्यागी जी की शब्द हैं ये फिल्म जिंदगी और तूफान में से निकाले हमने।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं थी मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर मैं थी मुकेश, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकी देने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

ललिता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाए, निकिति तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की माइति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकली निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर आज पर

तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस आप इसे सुनिए और निर्णय कीजिए क्या कैसा गीत है। इस तरह से आ रहा है।

सुरेश वाधिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आंखों पे डकार डाले तो बड़ा मजा हो, शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

0: चले करते हैं प्यार समझ में आया
1: तकरार
0: चली हो कहा देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेटिव 51 रफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाएगा यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेटिव द्रीन तख्त 51 से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी ने कहते द्रीन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निकत इंद्रियन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, अगर आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

घर लड़ भी गई अपने ही कदमों पे गड़ेंगी, भूले से किसी शौक पे दिल फेंक न देना, भूले से किसी शौक पे दिल फेंक न देना, झड़ जाएंगे सब।

हाँ, वाह क्या बात है। आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है, लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं। ये जी हाँ, ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का। तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आ है, आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

माई दी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दो होंठ हिले, ये गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्योदय या सूर्यास्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैनसन असिक द माखीफान जोंस ऑफ हंग ऑफ जोंस ऑनदर हंगजी बसेफिक दट हीन ऑफ कॉम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, aur doston, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मैं द ग्रोथ रेगोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa, hasteren, hamesa, hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ एन दी ओवर टेकिंग लीफन बेस्ट मैंसन एन खासो दोर। साथियों, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते तो झाड़ी बनो, अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते तो रास्ता बनो, अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो तारा बनो, तारा बनो, क्योंकि ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो। मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमैन्स वेस एंड स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन एंड अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन जैन वेस दान एन पात अल्स ये गेन जोन कुन जैन वेस दान एन स्टेर वन हेट इस नीट डोर ये ग्रोत दैट ये विन ऑफ फरलिस्ट वेस द बेस्ट इन व्हाट यू ओक मैन एंड डूट लिफमैन्स।

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन एंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओन जील ऑपनेमन वर्त ओन जील जोन Wordt onze geest kalm en sterk, wat leidt tot welwillendheid in onze omgeving en verkrijgt ons lichaam immense kracht. Wat mooi is dit toch? Wat is dit toch mooi, lieve mensen? Dus ga zo door, ga zo door. Dosten? हम सभी में अपने और दूसरों के लिए शांति सुकून के साथ साथ स्ट्रेस पैदा करने की क्षमता होती है, हम सभी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मित्रों, और ये हमारा नज़रिया है जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है मित्रों। ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं, और लिफमेंसन व्यालुमाल hebben het vermogen om zowel rust, stilte als stress te creëren voor onszelf en voor anderen. En het is onze houding die een van beide onderhoudt en voedt. Ye hamare mein kshamta hai mitro, to burai bhi hai hamare mein aur achhai bhi hai. To in dono mein se hum kya karna chahte hain? कौन सी लेंगे हम, कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूम टर्न है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूम टर्न है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैंद तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, best and vriendelijke mensen. Wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन अल्स हेट लेफन यू हंड्रेड रीजनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन लात हेट लेफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीजनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है मित्रों। आर्द्र मेंशन वो माकन हैत उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विल इन स्टेलन मर हैत लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्रीड द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Dosto, समय कभी हमारा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं रहता, तो फिर हम हमेशा सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? ध्यान करिए मित्रों, हम समय का इंतजार क्यों करते रहते हैं कि सही समय आएगा? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रेंडन बेस्टमैनसन द तेत वक्त नोइट ऑफ ओन्स Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik na hai, het is geen goede tijd.
1: Nee,
0: de tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमान फरखीफन इस मकलक मर ईमान वेर कुनन फरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अन फोर्स प्रों का हाथ ऑफ कैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस द कोर्ट्स हिट मार खदरख आलस ओपलोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूत ब्लेव पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, पक्का इरादा रखने का मतलब है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार ना हो जिसमें कमजोरी हो या ताकत की कमी हो। मित्रों, सिर्फ सही विचार और जीत के विचार जो आप खुद से कहते हैं पक्का है। जो आप खुद से कहते हैं और दृढ़ विचार हो मित्रों, लिफा मैंसन फर्स्ट बरादन जैन बतेकन खीन एंकल खदख्त है बन दी ज्वक्त ऑफ करख्त लोज है मैं जख्मे ब्रेंगत अलेन अलेन पॉजिटिव खदख्तन एंड खदख्तन फन ओवरविनिंग दी ये जेल्फ फोर हाउट जैन जीकर। दिस blijf altijd positief, beste mensen, blijf altijd positief. Bye bye, no? Vishwas aur prarthana dono dikhai nahi dete, lekin ve na mumkin cheezon ko mumkin bana dete hain. Geloof en gebed zijn beide onzichtbaar, maar ze maken onmogelijke dingen mogelijk. Houd dat geloof en die overtuiging levend, beste mensen. Houd het levend. Mitron, kabhi samjhao mat. Suniye, kabhi samjhao mat. Tumhare doston ko iski jarurat nahi hai. Aur tumhare dushman is par yakin nahi karenge. Tumhare dushman nahi karenge aapke baat pe. आपके समझाने पर मित्रों, तो बेस्ट मेंशन, गीव नोइट uitleg, je vrienden hebben het niet nodig. Geef nooit ongevraagd uitleg, want ze hebben dat niet nodig. En je vijanden zullen het toch niet geloven. Ze zullen het toch niet geloven, beste mensen.

दोस्तों, एक बच्चा एक बड़े को तीन बातें सिखा सकता है। तीन बात: बिना किसी वजह के खुश रहना, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहना, लगे रहना मित्रों, और जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत से मांगना, पूरी ताकत से। बेस्ट मैनसन अनकिंत कानन फॉलोवासन द्री दिंगन लेरन खुलकह जैन जोंदर रेदन altijd bezig zijn met iets en met al zijn kracht eisen wat hij verlangt, beste mensen. Aur mitron, aapke paas jo hai, uske liye shukr guzaar rahe hain mitron, aur aapke paas aur bhi hoga. Apne kaamon par bharosa rakhein, wo maine nahi rakhte hain mitron, mehnat karo. एक लक्ष्य बनाओ और उसी पे चल पड़ो। लिफा मैनसन वेस दंग बार फॉर वॉट यू हैप एंड ये जोल्ट मेर करेगन हैप फॉर त्रावन इन ये दादन जैलन वेल देखलक मे बेस्ट मैनसन।

दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्या हुआ, का होइगे। मित्रों, और सफल होने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो चीज़ों को करता है, मेहनत करता है, सही रूप से करता होगा। मित्रों, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और हाथ बटोर कर झलुआ में सूतल करियो मित्रों, तो कुछ ना बनी और बीमार भी हो जाइयो। हाँ, बेस्ट मैंसन एरजेन मैंसन दी डिंगन फोर एलकार क्रैकन एन एरजेन मैंसन दी टू कैकन हु डिंगन खबेरन एन एरजेन मैंसन दी जिख अफराखन वट एर इस खबेर। लिवे मैंसन, ओम सक्सेसफुल द जेन मुझे ईमान जेन दी डिंगन फोर एलकार क्रैक मुझे दूर Vooruit strevend is, heeft een doel. Dus blijf je best doen en het lukt wel. Het zal zeker lukken. Maar nog op plei lesie man en je wilt iets groots worden, rijk worden, veel bereiken. Dat je lesie lek man, zeker een pad doen. Pas op, hè. En als aan dat neer ook op. Mitron, ik zonder dress. हमारे लोक को बेहतर बनाती है, लेकिन सुंदर व्यवहार में हमारी जिंदगी बदलने की क्षमता होती है। कपड़ा से लोग कहेंगे वाह मोई मोई मोई मोई है, मगर तुम्हारा व्यवहार कैसे है, दैट इज बलांगर एक ओ मेंस अनमोई यूरक फॉर बेहतर ओंस अतरलक क्लियर Maak de man luid een spreekwoord. Dus een mooie jurk verbetert ons uiterlijk. Maar mooi gedrag kan ons leven veranderen. Vind je dit niet mooi? Is dit niet mooi dat jouw leven verandert? Helemaal mooi.

भाई बहनों, जिंदगी एक सफर है जिसमें समस्याएं हल करनी है, प्रॉब्लेमन को हल करनी है, ऑप्लोस करनी है मित्रों, और सबक सीखना है इस जीवन की यात्रा में। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव बतलाना है, एरफारिंग जो आपको मिला है वो बतलाओ, शेयर करने और एंजॉय करने हैं मित्रों, मज़ा लेना है, दूसरों को भी बताओ सही सही बात। फ्रेंडन हैथ लीफ इस न रेस मेट प्रॉब्लेमन ओम ऑप्टोलोसन एंड लेसन ओम तुलेरन मार बोफनल एरफारिंग एन ओम तेलन एंड फंत खनीतन। ये पॉजिटिव एरफारिंग मुझे मेट मैंसे देलन बेस्ट मैंसन। और साथियों, हमारे घरों में सही टेम्परेचर हमारे गर्म दिल और ठंडे दिमाग से बना रहता है मित्रों, हितकारक और एयर कंडीशनर से नहीं, दिमाग ठंडा होना चाहिए, बुरे बुरे विचार निकालो खोपड़ियों में से वगैरह वगैरह, तब दिमाग ठंडा रहेगा। अन्यथा आप एयरको में बैठे हो मगर दुनिया भर के कचरा खोपड़िया में है, तो कैसे ठंडा रहेगा दिमाग। आर्द खमैंसन द यस्ट टेम्परेचर इन ऑन द हॉरिजन वर्थ खहंत हाफ दोर ऑन द वार्म हार्टन एंड कूल हेस्टन नीड दोर फॉर वार्मिंग एंड एयर कंडीशनर नी ये मुझे फरस्तान कूल हाउदन नुक्तर जैन ये मुझ नीत नहीं खाती बेसिक जैन तो कहें वेल इन एन एयर को काम और सेतन मद हैप्पी टॉक्निक सन। दोस्तों, हालात समय और लोग किताब से बेहतर सबक सीखते हैं समस्याओं से, एरफारिंग से आपको और ज़्यादा ज्ञान मिले हैं मित्रों। ओके मैंसन सिटिवासिस तैत एंड मैंसन लेर ऑन बेहतर लेसन दान एन बुक मैंसन मैथ फेल एरफारिंग एंड दी कन यू और मेयर फॉर टैलेंट दान वॉट आर इन एन बुक की स्टार्ट बेस्ट मैंसन।

मित्रों, सुंदर विचार और अच्छे लोगों की संगीत एक संत आत्मा को पोषण है। मित्रों, मोये खदाख्तन एन हेट गजेलस्काप फन फेन मैंसन फूदन एन फ्रेड गजील। भाई बहनों, जिंदगी इस बात से नहीं मापी जाती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितना प्यार देते हैं, कितनी दया दिखाते हैं और कितनी यादें बनाते हैं। मित्रों, ये है मायने। बेस्ट मैंसन हैत लीफन वोर्ड नीत खमेतन दोर वात वो बजेतन मार door de liefde die we geven, de vriendelijkheid die we tonen en de herinneringen die we maken. Dat is belangrijk, beste mensen. Mitro, toota hua bharosa, dhyan karna. Toota hua bharosa, pighli hui chocolate ki tarah hai, chocolate ki tarah hai. To चाहे आप इनसे कितना भी जमाने की कोशिश कर लें, फ्रीजर में घुसेर दे ठंडा होने के लिए, जमने के लिए, तो ये कभी भी अपने असली आकार में वापस नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप अपने रिश्ता को, अपने जो बांध हैं किसी से अच्छे अच्छे रिश्ता, उसे बिगाड़ो मत, फिर बनेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। मित्रों, बेस्ट मैंसन, gebroken vertrouwen is als gesmolten chocolade, hoe je het ook probeert te bevriezen. Het zal nooit meer zijn oorspronkelijke vorm aannemen. Het kan niet, bestaat niet, beste mensen.

मित्रों, खूबसूरत रत्न, खूबसूरत रत्न विनम्रता है। खूबसूरत रत्न विनम्रता है। सबसे बड़ा धन ज्ञान है और सबसे शक्तिशाली हथियार धैर्य है। धैर्य मतलब खदुल्ध है। और सबसे अच्छी निश्चयता विश्वास है। और सबसे अच्छी दवा यानी मेडिसिन, सबसे अच्छी दवा हंसी है। खूब हंसा करो दोस्तों, खूब हंसो, खूब हंसो। दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं, मगर अच्छी बात पर, हंसी वाले बात पर खूब हंसो, खूब हंसो। शरीर के लिए ठीक है। मेंस हैट मोइस्ट सीरात इस नीदर है, द ख्रूस्त रेगोम इस वैस है, हैट क्रख्तस्त वापन इस खदुल्द, एंड बेस्त जेकर है इस खलोव, हैट बेस्त मेडिसिन इस लाखन, फ्लिंक लाखन, हार्ट लाखन, मनीत ओमन आंद्र पेंट दून ऑफ द ट्रेटर दत नीत मखवून खोजोंत लाखन। बेस्त मेंसन, ए प्राणी, कल की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए आज अपने जीवन में लोगों के लिए प्यार और प्रशंसा रखें। जीवन का सार, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, यही है कर्म जो जिसके द्वारा आप सुखी हो सकते हो। लिफा मैंसन, मोरखन इस नोइत खखारान देख दिस हैप फंदाख लिफ्द एन वर्देरिंग फॉर द मैंसन इन ये लेफन द बतेकन इस फनत लेफन वेस खुद फॉर इदरें ऑनख आख्त खलोफ कुल्तूर रंग एनजफोर्स एनजफोर्स वेस फ्रिंदलक met iedereen, wees behulpzaam. Dat is wat de natuur van jou verwacht, beste mensen.

काया सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। हनुमान है नाम महान, हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार, हनुमान करे बेड़ा पार, जो जपता है नाम हनुमान, जो जपता है नाम हनुमान, होते सब दिन एक समान।

राखे राम जैसे रखे राम, बस वैसे ही हमें रहना ही पड़ेगा। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बरसते रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ दिन हम सभी के लिए। जग में सुंदर है एक ही नाम, जग में सुंदर है एक ही नाम, बोलो जी बोलो जोर से जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय हनुमान।

संकटमोचन हमने यहाँ पर श्रवण की है, आपके लिए पेश किया जाता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, कहते हैं कि स्वर्ग में देवता भी अभिनंदन करता है, स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करता है जो हर पर हनुमान जी का वंदन करता है। और कहते हैं भी कि सुबह सुबह ले हनुमान जी का नाम, सुबह सुबह ले हनुमान जी का नाम, बाबा बाबा सिद्ध करे सब काम।

बजाए या तू प्यारे हनुमान चुटकी अवश्य बजाए जा, बजाए जा और हमारा कृपा होते ही जाएगा। आपका दिन आज का दिन, आपका दिन आज का दिन आपके लिए अत्यंत अत्यंत शुभ होवे।

0: इतने शक्तिशाली हो।
1: हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत क्यों भाग जाते हैं? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि उनके नाम से ही सारे राक्षस और तंत्र मंत्र कांपने लगते हैं? दरअसल रावण का एक छोटा भाई था अभिरावण। वो काला जादू और तंत्र विद्या में बेहद निपुण था। रामायण के युद्ध के दौरान जब श्री राम और रावण का संग्राम चल रहा था, तब अहिरावण ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लिया और उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे भी पाताल लोक पहुंच गए। वहां हनुमान जी और अहिरावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अहिरावण किसी भी तरह से मारा नहीं जा रहा था। तब हनुमान जी को ध्यान हुआ कि अहिरावण की मृत्यु तभी होगी जब पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ एक ही समय पर बुझाया जाएगा। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना रौद्र रूप, पंचमुखी हनुमान। इस रूप में उन्होंने पांचों दिशाओं में जलते दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। उस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक कांप उठे थे। तो आओ सब मिलकर बोलें हनुमान जी का नाम।
2: छोटा रूप में हमने सुन ली है कि कहा के पंचमुखी हनुमान क्यों ऐसा उत्पन्न हुए हैं, किस कारण, क्योंकि उनको चाहिए था ये पांच दिशा में जो दीपक बुझाना था, इसलिए वो पंचमुखी धरे और एक ही साथ में वो पांच दीपक जो है वो बुझा दिए है, तो इसमें जीत हुई। इसलिए कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।

0: अगर उस रात हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप नहीं लिया होता तो राम और लक्ष्मण शायद कभी जीवित नहीं लौट पाते। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, रावण की हार तय थी, तभी उसने खेला अपना सबसे खतरनाक दाव। पाताल लोक के महातांत्रिक सम्राट अहिरावण को बुलाया गया। एक अंधेरी रात जब पूरा शिविर सो रहा था, तभी माया और तंत्र की शक्ति से अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें सीधे पाताल लोक ले गया, जहां सूर्योदय से पहले मां भवानी को उनकी बलि चढ़ाई जानी थी। जैसे ही विभीषण को इसका पता चला, उसने हनुमान जी को सूचना दी और हनुमान जी बिना एक कल गवाए पाताल लोक की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो किसी भी योद्धा के लिए अविश्वसनीय था। राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनके चारों ओर पांच दिशाओं में जल रहे थे पांच दीपक। अहिरावण हंसते हुए बोला,
1: इन पांचों दीपकों को एक साथ बुझाए बिना मुझे कोई नहीं मार सकता।
0: एक शरीर एक दिशा, लेकिन यह चाहिए था पांच दिशाओं का प्रहार। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना सबसे अद्भुत रूप, पंचमुखी हनुमान। पूर्व में वानर, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और ऊपर हयग्रीव। पांच मुख, एक साथ प्रचंड श्वास और एक ही पल में पांचों दीपक बुझ गए। अहिरावण की सारी शक्ति उसी क्षण समाप्त हो गई और अगले ही पल उसका अंत हो गया। कहा जाता है पंचमुखी हनुमान के पांच मुख केवल रूप नहीं बल्कि पांच दिव्य शक्तियां हैं, विजय, निर्भयता, सुरक्षा, समृद्धि और ज्ञान। इसीलिए पंचमुखी हनुमान को चारों दिशाओं का दिव्य रक्षक माना जाता है। जब भक्ति और शक्ति साथ खड़ी होती हैं, तो पाताल की अंधेरी ताकतें भी टिक नहीं पाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है,
2: ऐसे ही है, भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है। मानते हो और विश्वास करते हो तो आप पे ये भी लागू है। हम सब पर ये जो मानते हैं और जानते हैं और मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन पर ये लागू है।

0: विकी, जो मिलना है प्रभु राम से, जो मिलना है प्रभु राम से, तो मिल पहले श्री हनुमान से।
1: जब राम जी और लक्ष्मण जी पाताल लोक में कैद हो गए तो हनुमान जी ने अचानक 5 मुख क्यों धारण किए और वो 5 मुख आज भी संकट मोचन क्यों कहलाते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। रामायण युद्ध के दौरान जब रावण हार की कगार पर था, उसने अपने मायावी भाई अहिरावण, पाताल लोक का राजा, को बुलाया। अहिरावण ने छल से विभीषण का रूप धारण किया, हनुमान जी को भटकाया और राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। अहिरावण की जान 5 अलग अलग दीपकों में छिपी थी, 5 दिशाओं में रखे गए, एक साथ बुझाना असंभव। जो 5 को एक साथ बुझाएगा वही उसका वध कर सकेगा। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, समझ गए कि 1 मुख से ये काम नहीं होगा। तब उन्होंने दिव्य रूप धारण किया, 5 मुखी हनुमान। 5 मुख एक साथ प्रकट हुए। पूर्व दिशा में हनुमान जी का वानर मुख बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक, दुश्मनों पर जीत दिलाता है। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख भगवान विष्णु का उग्र रूप, राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश करता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख विष, सर्प और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। उत्तर दिशा में वराह मुख पृथ्वी का संतुलन, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक। ऊपर आकाश दिशा में हयग्रीव मुख ज्ञान, विद्या और बुद्धि का स्रोत, अज्ञानता का नाश करता है। हनुमान जी ने एक ही फूंक में 5 दीपक बुझा दिए। अहिरावण का वध हुआ, राम लक्ष्मण मुक्त हुए। श्री राम ने गले लगाकर कहा, बजरंग बली, तुम्हारा ये रूप कलयुग में भी भक्तों की रक्षा करेगा। हर संकट में 5 मुखों वाली शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। रहस्य ये है कि 5 मुखी हनुमान कोई सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि पूर्ण सुरक्षा का कवच है। 5 दिशाओं से 5 प्रकार की बाधाओं से बचाते हैं। घर में 5 मुखी हनुमान की मूर्ति रखने से तंत्र मंत्र, बुरी नजर, भय, अज्ञान सब दूर होते हैं। तभी से भक्त पुकारते हैं, जय 5 मुखी हनुमान, क्योंकि बजरंग बली सुनते हैं हर दिशा से, हर संकट में। कमेंट में जय 5।
0: आपको हमने 2-3 बार ये बजरंग बली के 5 मुखी के कथा सुनाए हैं। मैं खुद भी सुनती हूँ ताकि हमको पता चले कि 5 मुखी जो है, 5 मुखी हनुमान, इनका कथा, इनका रहस्य क्या है, ये हमको पता चले। तो आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ऐसे कथा मिलता है सुनने के लिए, द एनख एख्त फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। कहते हैं कि हाथ से किया गया दान, हाथ से किया गया दान, मुख से लिया गया प्रभु श्री राम का नाम, कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री राम।

0: लखबीर सिंह लक्का जी के आवाज़ में कि मेरे घर के सामने हनुमान जी का पहरा है, क्या बात है। तेरी भक्ति से आता है, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। ये बात तो सही है कि तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम। इस जग में सबसे बड़ा मंत्र, इस जग में सबसे बड़ा मंत्र, जय हनुमान जय श्री राम।
1: कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं, वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं, वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है।

क्या संभाले तो हमें कौन संभालेगा। सुंदर अति सुंदर हनुमान जी स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। पवन पुत्र जिनका नाम है, पवन पुत्र जिनका नाम है, तिरुपति जिनका धाम है, स्वामी जिनकी राम है, स्वामी जिनके

0: जय जय जय बजरंग बली, बली महिमा तेरी। डिवोशनल रॉक रॉक स्टाइल पे ये हनुमान जी का भजन हमने श्रवण की है। जय जय जय जय जय बजरंग बली।
1: क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते थे? चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान राम के दरबार में हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा, तो हनुमान जी ने जिज्ञासा से पूछा, माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता मुस्कुराई और बोली, मैं ये सिंदूर भगवान राम की लंबी उम्र और उनकी खुशी के लिए लगाती हूँ। बस फिर क्या था, हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम की उम्र बढ़ती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो प्रभु राम को और भी लंबी आयु और सुख मिलेगा। बस तभी हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब भगवान राम ने हनुमान जी को इस रूप में देखा तो वे भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। क्या?

अति सुंदर हनुमान जी का स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और ये दिन जो है, ये पल जो है, ये अत्यंत

इतिहास कहते हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, इतिहास कहता है, इतिहास यानी कि कल जो बीत गया, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज, ऐ मेरे दोस्त, तो हर रोज सुख हो।

केस गोलाई के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ अलहदा आपके लिए यहाँ से पेश किया जाता है आज के तारीख में। ओ सुदामा जी ने कृष्ण श्री कृष्ण जी से

कहा, सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, दोस्ती का असली मतलब क्या है। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हाँ कृष्ण जी के हंसकर कहा, कितनी मुस्कान है भी कृष्ण जी के ना। तो कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है ना ए दोस्त, वहाँ दोस्ती कहाँ होती है।

सुहानी चांदनी रात, राम नारायण शिव राम जी के आवाज में आपके लिए पेश किया जाता है मेरे दोस्त फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको हम बता दे और क्या बताना चाहती हूँ तो वो ये है, जरूरत से ज्यादा मिले तो उसको कहते हैं नसीब, जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है जो, उसको कहते हैं खुश नसीब। यानी कि नसीब बदनसीब और खुश नसीब। तो आप इसमें से कौन वाला हो कि बदनसीब हो, खुश नसीब हो या नसीब वाला हो।

यादगार ऑर्केस्ट्रा के साज और संगीत में राम नारायण शिवराम जी के आवास में यहाँ से हमने श्रवण की है। श्री कृष्ण जी के वाणी, श्री कृष्ण जी की वाणी वो ये है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं ना, आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है

बहुत खूब मुकेश चोलाई जी की आवाज में हमने श्रवण की है माई तेरी चुनरिया। हम जब सफल होते हैं, तो तालियां गूंजती है। हम जब सफल होते हैं तो तालियां गूंजती है, चमकते हैं चेहरे और कैमरे मुस्कुराहटें कैद करते हैं। मगर उसी भीड़ के पीछे एक इंसान खड़ा होता है ना फोटो में आता है, ना मंच पर बुलाया जाता है। बस आंखों में नमी और होंठों में एक ही शब्द मेरा बेटा, उसने नहीं मांगी पहचान, ना ही चाहा सम्मान। उसकी सबसे बड़ी जीत, हमारा एक छोटा सा मुकाम। वो दिन में पसीना बहाता है, और रात में ख्वाब बुनता है। हमें ऊंचाई पर देखने की, हर रोज एक नई कोशिश करता है। जब हमें थकान होती थी, जब हम

0: नहीं थी तो वो हमें था। वो पीता है ना कुछ कहता है ना जताता है, मगर उसकी चुप्पी में पूरे ब्रह्मांड जितना प्यार समाया होता है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales.

रेनी राम नारायणी और मुकेश चोलाई के आवाज में चंदन सा बदन फिल्म सरस्वती चंद्रा में ये गीत गाया गया है। मुकेश जी की आवाज में कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों से, शुद्धता होती है विचारों से, आदमी तब पवित्र होता है।

जीना यहाँ मरना यहाँ, फिल्म मेरा नाम जोकर से निकाल दिया गया है राम नारायण शिवराम के आवाज में। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना, वही प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है।

हाँ अवश्य, ये सवाल तो उठता है कि कैसा तेरा संसार, छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबका हो।

वाकई में जिंदगी ख्वाब है। हमको सुना दी एक बार फिर राम नारायण शिवराम यादगार ऑर्केस्ट्रा के साथ, जैसा जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे वैसा ही मोहब्बत तुम्हारे औलाद तुमसे करेगी। यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ का फर्क है।

रियाज अहमद अली के निर्देश में। मेरे प्यारे सुनने वालों, बुद्धि भक्ति बुद्धि से होती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरते हैं।

ये बात तो सही है कि राम के बिगाड़ल अब कोई ना बनाए, कोई के तो हिम्मत ही नहीं है कि वो बना सके कि राम के बिराग बिगाड़ल। सोचो तो कि राम, राम के नाम कितनी महिमा, कितनी अनमोल है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरी आवाज के सुनने वालों, प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर बहुत सारे स्वागत कर रही हूँ। मैं रमता जोगी राम सुनाएगा आपको रामदेव चैतू।

मैं रमता जोगीराम, मुझे दुनिया से है क्या काम। जरा सोचो, जो राम में मगन हो जाएगा उसको सच में दुनिया से क्या काम लगेगा। सुना दी, जी हाँ, वही उस्तादों की उस्ताद रामदेव चैत्य जी की आवाज में। आपके आने से जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आपके आ जाने से, आपके आने से जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दिल से दिल में बसे आपकी सूरत है, दूर मत जाना हमसे कभी, दूर मत जाना हमसे कभी भी, भूल कर कभी हमसे दूर मत जाना। हमें आपके हर कदम पर आपकी जरूरत है। हरी अवतार जी की आवाज़ में।

हम क्या कहे कि हम के हाँ, ये तो कह दिया कि हम तो पिएंगे दिन रात, मैं नहीं। पर श्रीमान हरि अवतार जी ने कहा, इनका असली नाम है सोमाई अवतार। और इस उस्ताद का जन्मदिन जन्म हुआ है नेखन दिन त्वीन त्वीन तक के। इनका जन्म घाट है 8 मार्च 1923 तक में। हालांकि ये उस्ताद अब तो नहीं है, और इतने अच्छे अच्छे गीत बैठक गाना गीत हमारे खातिर छोड़ गए हैं। अकादेमिस सिकनोस के ये एम्बुलेंस ड्राइवर था, शोफेर। द हेर हरि अवतार इस खबोरन ऑफ 18 मार्च 1922 एंड फ्रॉम बरूप वास है एम्बुलेंस शोफेर बाय द अकादेमिस सिकनोस इन पारामारिबो। En op jeugdige leeftijd begon hij was zijn interesse in zang en muziek. Aur khas baat ye tha ki ye apna sangeet apne hi style mein ye ontwikkel karte the. आप गाने जो सुनते हैं आपको इससे भी महसूस हो जाता है कि ये अपना ही अंतविकले आप अपना ही बनाए हुए

0: ये उतने खूब से फरमाए कि हम छोड़ देंगे उन दोस्तों को जो पीना जो पीते हैं। और ये हकीकत भी कहा है कि उन दिनों में ऐसे होता था और आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। तो ये देख देख कर ये श्रीमान हरि अवतार जी देख देख कर और हाँ कंपोज की है अपने गीत।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: इसाक यांकरन जी की आवाज में यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। ये भी ओल्ड इज गोल्ड आपके लिए पेश किया जाता है। कितना कितनी मोहब्बत है तुमसे, कितनी मोहब्बत है तुमसे, ये कहना नहीं आता है मेरे दोस्तों, ये कहना नहीं आता है। बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना हम, तुम्हारे बिना हमें रहना नहीं आता। तो पेश किया जाता है यहाँ आपके लिए सत्यानंद रेखा एंड बाबूराम जी, बाबूराम ठुमरी ठुमरी स्टाइल में यहाँ हम सुनेंगे बैठक गाना।
1: ए जी कभी बजाओ बांसुरी और कभी नचावे मोर, कभी खेले सखिया संग की मोहन।

गौओं सब रहे पुकारा तुझे, आ जाओ मेरी जसोदा लाल, ओ सखियां सब रहे बिलख

0: शबा शबा शबा जमुना किती सत्यानंद जी के आवाज में हमने सुने हैं और यहाँ से तैयार हो गई है आपको सुनाने के लिए श्रीमती घिसाई दुबे जी।
1: पाकर राम मोरे सोने के खड़ा हुआ,
0: अरे वाह,
1: आए गई ले बनिया दुकान मोरे राम, आए गई ले बनिया दुकान मोरे राम।
0: कितनी सुंदर सी आवाज में सुना रहे हैं।

हाँ, घिसाई दुबे, श्रीमती घिसाई दुबे जी की आवाज में हाँ, काफी सालों के बाद आपको सुना दी है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से। आपका पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, मेरी जिंदगी में खुशियाँ, मेरी जिंदगी में खुशियाँ की बहार तुमसे है, जीवन में उमंग का संचार आप ही से है।

शाबाश, कितने अच्छे ढंग से ये बैठक का नाम है या एंड होता है ना टम क्लार। उस्ताद बहाओ झिनकू, इनका जन्म दिए एक इनका जन्म हुआ है 12 मार्च। हाँ, इनका जन्म हुआ है 12 मार्च 1924 के ये उस्ताद। वेल बकेंद टोनेल स्क्राइफर, एक्टर, म्यूजिकांत, सांगर एंड लीडरन टेक्स स्क्राइफर इन सूरीनाम। ये एक एक गो बड़े बड़े उस्ताद था उन समय के लिए, जो अपने से अपना गाना का टेक्स अपना गाना लिखते थे। ऑपरेक्टर एंड लीडर फॉर द पॉपुलर, द पॉपुलर 9 लखार संगीत समाज। हमारे बुजुर्ग जो है सुनते होंगे तो याद करते होंगे, हाँ ऐसा था। बकरों द दिल नाम आन फर्शकेल द सॉन्ग कॉन्टेस्टन हेफ्ट फेर तीन तोने उस तो कन ऑफ से नाम स्थान वार उंदर 9 लखार एंड बेटा हो तो ऐसो हो। इन द लेर खवेस बै सैन गुरु तमन बहादुर आन वी है खार न होल्ड ब्राख। तो ऐसे बड़े बड़े उस्ताद था उन समय पे, जो ऐसे मधुर गीत हमारे लिए ओल्ड इस गोल्ड छोड़कर, और शरीर तो छोड़ गए पर आवाज आज तक है ताजा। इस बार सुनेंगे जॉयस हरीश की आवाज़ में।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है यानी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी रह स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तवड़ हाउस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी की आवाज में ए मेरे दिले नादा।

फ्रॉम द मूवी तवर हाउस से भी हमने पेश किया है, ए मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, तुम मुझे यूँ भूला न पाओगे।

आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तुमने अभी देखा ही क्या है। मैंने देखा है घर कैसे बिखरता है, अपने एक पल में कैसे पराए हो जाते हैं, मोहब्बत कैसे मुंह मोड़ लेती है, ख्वाब कैसे मरते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने ही लोग किस तरह बदल जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं याद न जाए बीते दिनों की फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इसी फिल्म से हमने पेश की है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में याद न जाए बीते दिनों की। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। अगर आप किसी को अपनी खुशी में याद करते हो तो आप उस इंसान के करीब हो। अगर आप किसी को गम में याद करते हो तो वो इंसान आपके करीब है। भरी दुनिया में आखिर दिल

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है ज़िंदगी, चलने का नहीं सही संभलने का हुनर तो आ गया। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गीत से आप सुनेंगे द टाइटल।

अभी आप सुन रहे थे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शारदा जी के वास्ते। जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो शारदा जी आप ही के नाम हम पेश करते हैं। गीत का बोल है, मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पारस मनी से।

मेरे दिल में हल्की सी, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी पारिस यानी पारस मनी से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शारदा जी के वास्ते, जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। मोहम्मद रफ़ी जी, हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।

आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, अनीता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा, पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी फ्रॉम द मूवी धमाल, तो से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखे तो ये सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

अभी आप सुन रहे थे गुरिया चुराना मेरा जिया, धमाल फोर से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी चलो ये भी हो जाए।

0: श्री टू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाले, वो बेवफा, शलावत, शलावत, शलावत।

फ्रॉम द मूवी स्त्री तो उसे हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

फ्रॉम द मूवी जेनी वेट्स सनी, इसी फिल्म से हमने पेश किए है सावन में लग गई आग दिल में रहा है। स्त्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से हमने पेश की है बैसलाव। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

अभी आप सुन रहे थे रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो तुम ही हो बंधु। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से दिल तक, ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। रुत्वी पांडे की आवाज़ में हम पेश करते हैं घाघरों।

अभी आप सुन रहे थे घाघरो रुत्वी पांडे की आवाज में इश्क से आगे ये न्यू सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे इश्क से आगे। सुनने वालों, समय हो गया है विज्ञापन का।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज़। Have a blessed Sunday and take care of yourself. Till next time.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहून के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब, शास्त्रीय काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं, हम चलते हैं सूरीनाम के ओर और फेहापे के ओर। फेहापे के ओर यानी कि वहां पर अब फेहापे के बस्ती जो है हमारे जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापे का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफरा कृष्णा मथुरा। वो बोले हैं इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापे तो ओवरवेगन indien zij vanuit de partij en verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen. Bolle op bereid hij voorzitterschap lewike. Bolle jeb oké VHP ke kandidaat. Bolle stem kari tap wan up stem huiga. Kike voorzitter bani VHP ke. Bolle belangrijk huiga. कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एन बरूप दून बोले जालिक है ओवरवेकन दल सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से, और मथुरा बोले है फोलखंड यार आने वाला साल में मई में फेहापे के बस्तूर फरकिसिंग होगा मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई। तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फोर्सेटर तो लोन जानो है चांस तो कि उसका और दीवार प्लोसिंग ऊपर ले दे में से। और बताए गए ये है जहाँ पे हम लोग के फोर्सेटर्स का वार्निमस तैलक ग्लेन उलर्स आन ते वैसन आज फोर्सेटर। और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापे एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेदर सबन किसे करेगा। और बोले हैगा फेहापे बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा। बोले आज वीर अ स्टर्कर लेदर सुलन हेवन hoofdbestuur betaalde VHP ke, ki bole 76 jaar VHP ke bestand hai, aur bole VHP bole doormaak in de samenleving, bole naram garam ooch neech, bole sab hum log mee maak kar chukli baati, aur bole VHP uiteindelijk ek goh sterker terugkom, bole phin se terug aai, ekar baare mein onder voorzitter joon hai, VHP ke Asis Kumar Gayadin, u bole hai ga binnen de partij se die bij hem aandringen die bolle hem bij voorzitterschap bolle kie kandidaat aanstel kere kui bolle tenzij je sab kui hem kiezen kere tam waardoor hij bezig is een goed team te zoeken voordat het eventueel zo een stap zet. और हूफर्स्ट्यूर्सके लेत महेंद्र गयादीन उस सफा बोले है बोले हम यईस मांगेला कि पुराना मिनिस्टर जो है गणेश कुमार कन्हई बोले आउस अनखस्किक्त कैंडिडेट बोले हुए पार्टी लीडर के। और बोले हैगा फॉल्कस हम बस के कन्हई ओवर अ गुड सीवी kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de voorzitterschap mee mee hoe ga verkiezing VHP ke op ke voorzitter benega en bole hega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. और ये बात बोले है मथुरा बोले है उत्तराधीन से बोले हम बाटी। तो ये बातचीत है फेहापे पी के अंतविकलिंग के बारे में आप लोग को हम बोली थोड़ा से बताए दे भैया सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है। सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल, और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है। एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया। ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है। पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तवा वही में जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया। सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस्तू द खवान एंड फूड तो एक इस नतीलक स्वार बस खादक में से एगो बहुत सिंग भैल है।
और बतावे 16 तारीख अगस्तस के अतवार के एक सेफ सिटीज कैमरा मस्त है अंतन द्रख्तर वेग बोनीस्ट्रात में ओए मेगो 48 यार के आदमी जाए के बिको स्ट्रात से निकल ले सेंट्रम से जाए के कैमरा मस्त में मार दे भैया तो ओके खा तो अब बवेस खोजे के ना है वत हुआ पे सब लिखल है अप लेवल है कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से देखा अरे नहीं भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सुरिनाम में पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना देसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोल से रखीन जिमोन के बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है अली पोप सेंशन विश फॉर द रेस्ट बोले उस सब देशों हमें कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले हैं एक बरिश उस सब हो गए है और बोले एक कोचित नफरान नौ लिख्स बोले हम लोग अपर पटमुनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है दाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नि शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ओंतविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रॉइड खांग जोन हम लोग के सलार से दुकान में जोन प्राइस से बस्तांद सीकर है थे कंसर्न फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये is daar zit hij volgens eigen zeggen bolle geen wenselijke verbetering. तो पीके एकर बारे में बोले दोस्तों बोले हैं रखेरिंग बोले कुछ ना करे है बोले स्टेफर चेस फॉर विसलन अंदर पॉलिटिक फुकुरन सेटर ऑफ द पोस्ट इंटरवेल बोले वही पुराना कल्चर बोले वही मशीनिया चले है बोले बवेर करे है बोले पॉलिटिसी एंड पॉलिटिक्स स्पॉन्सर टेन खुद कोमन इन प्लस वन रेक्स रीज द बफोल्किंग मां बोले इको फरंदरिंग ना है Coalitie krijgt langs Piqué, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bole appen partijbelangen, bole regering wakker he. Maar bole janta ke belang me bole usap huana baitale. Pahle okar partij ke admi ke chahi. यानी कि फोर्डील बनावे के द खसंत है सड़क एंड अंडरवेज बोले हैगा जेनिफर सिमोंस के बोले है ग्रोथ टेस्टन मिशी काबा फॉल्क्स फसंत है के जो मिनिस्टर है सेल्फ एन फॉर द ग्रोस्ट ब्लंडर बार रखेरिंग के भैया मिशी काबा के जो पास्टर है और नाचत आयल है उसेर में और कैसे बन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दी से भैया अब बोले एक को वार्ता होकर बोले अंडरवेज फॉल्स gezondheid, gezondheidszorg, bolle niet stevig op orde worden gebracht, bolle hij spreekt daarvan van een valse start. Simon Desrood moet reshuffle, bolle zelf Simons ke jahe nikar jai ke, oke jahe zelf reshuffle hoi ke, Piqué bolle he, bolle regering zich ek berisse bolle usse baitel he, au bolle beer beer appen problemo ghaskawe he, vorige regering jai ke luka he ke usse चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कर ली बोले वही के से नरी दरी ने इस सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बलूफ दैट बेहतर टू डून वेट फॉर ऑफ वेल का प्रॉब्लम एर लिखन द किसर्स हैव द न्यू मार्क्ट हैव जस गेस्कोवन ऑन द पेन होप ऑफ द रेमन अखतरा ब्लेवन फर्टेलन वर अलमाल फॉल्ट वाज बाय द फॉरग रेगिंग और घसकावे की संतो की ब्रिस्वाई के रेगिंग प्रॉब्लम हुआ करी से और बोले तू जल Lele politieke, dan moet je toch weten wat je allemaal staat. Lunjano bija, oude voetballers gela bija, Nederlandse, oude deze Suriname me, oude sabke milella diaspora ke Surinaamse paspoort milella. Te hia paspoort kwestie van de diaspora voetbal kan deze bij staatsbesluit geregeld worden. Want Simon bole paspoort ons heb in trek zijn hoe ik en bole balawato doen hoe ik deze heb kelwaar kere paspoort ze bhaiya bole hoeven de wet nationale
overheid. Bolle 14 augustus ke 2026 tijdens vervolgbespreking commissie naturalisatie van Nationale Assemblée DNA ke. Ik erbare mee wat ja hein. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe de jebante voetballers ke bare mee.

तो दोस्तों अब देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है जिकर नाम है लेस्ली यार फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गए लहा और शनिवार से ये गुम हो गया मैं से इस फरमेश सातरख आफों से एक पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंडन एंड आंद्र बर्त्रोकन हैवन सीन्स रात के ओके सब ना पाई से द्रेंगन बरूप करेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐट कह कर नारदमान क्यों कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वार है फोर सो फेयर बकेंट इसके जीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर्य सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोली का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इकर बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में, ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केरतो दी क्रोमो तो एक लाश लेक मिलल है सवेरे सवेरे भैया अबेत हीफ आन खतरोखन ओकर भाई गए लेते कि से केरतो दी क्रोमो सोंदाख नो खसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाए के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्श had twijfels over een natuurlijke doodstraf, doodoorzaak. Bolle hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Terwijl een natuurlijke dood na hij, ook er naak me zich groen bijl hij, en ook er dehi me blauwe plekken hij, de ik er banen me... Forensische opsporingdienst in schakel wel hij. Bij de onderzoek werden vooralsnog bolle in braak garoa met nabijl hij. Bolle letsel op het lichaam zijn vastgesteld. Of bolle beslag genomen. De zaak is over bij de patamilel hij. एक नतुरलक ई दौत से न मरल है। अब देखो भैया को नवा देना खबाऊ है, हाँ ई नौका देना खबाऊ है। ई है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीड हैंक आरोनस्ट्रात में, हैंक आरोनस्ट्रात में वो नवा देना खबाऊ है, न्यू देना खबाऊ है। तो हूँ आप एगो निगरम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका देना खबाऊ में काम आदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई आदमी जो नहीं फिर तक यार के है ये भैया अपना दम को थोड़ दिया है। तो ये बड़ा दुख की बात है, काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है, संतो बोमा के बात है एगो 19 बरिस के

मिला से ब्रोंफिस पे जात रहा और बोले एगो त्योता हिशाई फिशर रहा और बताई गई है बालगोबीन ओवर बोमा में खरी इन द रिक्टिंग फॉर मोहम्मद रशीद पीर खान वे तेर होगते एगो पांत लगे बोले है का फर्मूडलक ना रेक्स वार्स्त और स्टीर बवीकिंग हैवन खमाक ओम ते केरन इसे मांगीज घुमावे और तैदन देशे manoeuvre kwamen de bromfietsen in botsing met de auto ooit is oud. Hij is een nakjalker is door 20-jarige door de harde klap liet de balgobin ernstige lensel op. Obole hij overleed mensen jammer. 29-jarige lundake die hand hoe hij hey, bouwdoekke baante. Bolle Surinaamse rijbewijs verkeerde tijden van de aanrijding niet onder invloed doen besloten lautra. Udaru na pilera bhaiya. और बेचारा के देहांत हो गया बहुत अरेडिंग हुए ब्रोंफिस से भाई सूरीनाम में कैडेंसी के तुलन जानो है फेया पेयर है कैडेंसी बोले देंग नो किंग का नेक्स्ट सिमोंस बोले रहा बोले वो किंग का इसी स्टीम बाकी सिस्टम किंग की ना भैले भैया एक बारे में अर्थेस बोले कैडेंसी बोले फॉल्कर्स आर्नोल्ड बुकरू ओकर नाम बा अर्थेस ओकर नाम बा कैडेंसी बोले रखेरिंग उट ओम इस्ट फरंदर उट द लेस फन बलोफ्टन दी से टाइटस द फरकिसे कंपाई हीव कमाल कैडेंसी स्टेल दैट द सेल्फ द कोअलिसी पार्टी एंड स्वार क्रिटिक हरन ऑफ यहाँ ये सब क्रिटिक कर रहा फिर यहाँ पे के बा बोले अप्रे बोले कुछ ना करी से आदमी के जो उंगली देखिए भैया तो चार गो तोर कंती आवे हैं दस एक गो कर कंती में चार गो तोर कंती देखा है जो कोई ऊपर जो उंगली देखियो तो कोशिश करियो कि तू अपन काम मोई से करे है लेकिन सिमोंस रिसलान अपन काम न मोई करे है कैडेंसी बोले है belasting toegevoegde waarde BTW werd ingevoerd iets meer dan een jaar regering Simon. Verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Belasting John Bolle Hamloon sinds ook in Lagaira is een manger dat ze terugdraaien maar ik kon terug naar draaien is die belasting en ben ik naar hoofd te bereiken. Bolle hij ziet dan aanhouden de steking doek aan met prijtje ja he. Bolle den ook kinkie next me het dag regering die zie uit Mickey den Kinky One Sunny. Chan was niet goed toen hij alle subsidie afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer train trekken. Dat Mickey den Bing regeert dat hij Chan ben Pina a volk. Bolle Chan dherer aan BTW. चांद सिपसीरी सब आप ट्रैक कर ले रहा थे इसे बोल रहा ना मुझे काम करी से बोले वो किंग का सिस्टम तो बोले अब तो क्या चाहे बीती हुई या तुरंत ट्रैक करके कि आदमी बीती हुई ना हो भर के वहाँ चांद हल ले रहा तो लोग बोले रहा ना मुझे तो किंग की करना बोले हैगा सिपसीरी जोन चांद सब इन ट्रैक कर ले रहा आदमी लोग के देश के पैसा बचावे खातिर तो बोले कहे ना तो फिर सिपसीरी करे है बोले कुछ ही सपना करी से संतोखी ब्रिंसवेक 2020 में बोले फिनांशियले रफाशे जोन इसे कर ले रहा हेफ ओवर खनुमन बोलेगा और आईएमएफ से बोले अप प्रोग्राम चांस तो की ब्रिंसवेक कर ले रहा द हेडर रेगिंग हेफ एक्टर गेम आईएमएफ प्रोग्राम ओम आउट टू फुरन बट दिस ओनदाग सेन वर्बेटरी नीट मेरकबार बोले इसे तो फरप्लेक बिना आईएमएफ के प्रोग्राम वर्बेटर करने फॉलो करके बोले तोख इसे बोले कुछ ना कर पाई से और बोलेगा komen jullie het volk uitleggen waarom jullie hiermee doorgaan. Al dus VHP'er, Kadensi vindt het jammer, ki janta jon he, politieke partij houden dan van Surinaamse volk. Als voorbeeld noemt hij het geval van massale vissterfte jon ser makame bhail he, of bole officiële oorzaak kan worden aangegeven. VHP'er bole he, bole de staat in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat een kritischer is naar de VHP toe. To yesa babat kadensi bole code rood ini aher kondre abode
Aldus ka densi dosto, to aap log ko hum ek geet sunate hai, to abhi

और जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। तो दोस्तों तो हम चलते हैं और आगे को अपन समाचार को लेकर हम तुरंत चलते हैं निकेरी की ओर। दोस्तों वहां पे निकेरी में निकेरी की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे। निकेरी के जोन देसी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से निशा कुर्बान बब्बू, निशा कुर्बान बब्बू देसी है निकेरी के। और उमांगे हैगा, उमांगे हैगा निकेरी में और काम होवे। मेयर वेरक माकर फान बेहतर वीखन रास्ता जोन है बोले और बेहतर चाहे होवे के। और बोले जोन यंगर है उ सबके काम भी चाहे मिले के। वेरा खलीखन है भी चाहे होवे के। बोले जो हाउस फेस्टिंग है बोले राइस सेक्टर के अंतविकलिंग बोले सब चाहे फॉर बेहतर होवे के। बोले फोकस हार इस हिन एंकल सामे लीफे ओई 100% ऑफ एन मुतन ओवरहेड instanties en burgers gezamenlijk blijven werken aan de vooruitgang. तो इस सब चीज तो बड़ा बढ़िया देसी सोचे है। और अब सोचे तो बाटो तो अब चाहेंगे देसी के करे के। कुर्बान बब्बू बोले है बोले आ द सांत वेखन मुतर ओक आन खपाक्त वर्दन बोले वेखन ऑथोरिटी कर वर्क इन मेडिस इन फर्किल ट्रायक्टन। और बोले है गा कुर्बान बब्बू बोले है देसी बोले ना दुखरक विल इंसेटर फॉर यंगरन। और बोले फॉल्कस हार मुतन बोले मेर बानन और वेर खलीगन है चाहे होए के निकेरी में। स्लाइस जोन है भैया बोले बलांगरेक फॉर राइस सेक्टोरन। कुर्बान बब्बू बोले है बोले बलांगरेक प्रियोरिटाइट हैगा जोन स्लाइस है चाउर के जोन धान आदमी बोवे है ओके सब रीनो फेर करे के। बोले दृंगत हेयर स्टाइल नोदक है बन नो सेक्टर फर्दर कुनन ओंतविकलन। तो बड़ा अच्छा बात है। तो यहाँ पे बताए गए है बोले है बब्बू बोले है कुर्बान बब्बू बोले है बोले ऑफ द अखेंडा ऑफ द मार्क इज फॉल्कंस आंध्र इनोवासी तो जो बाजार है वह चाहे रीनू फेर करे के। बोले द आंध्र कनाल पॉइंट इज द कोर्ट ऑन फक मेंशन फक मैन से बोले बहुत कमती है। बोले जो बहु में बा अब रेस सेक्टर इन इंस्ट्रक्टर दान आरबेस क्राफ्टन फॉल्स डीसी मुइलक इस तो फिंडन। कुर्बान बब्बू बोले है बना दृक्त दैट दिट नीड अलेन इन निकेरी स्पेल मार अन लैंड का प्रॉब्लम इज मेड दैट फॉर वर्डन बुटलांस आरबेस क्राफ्टन आंगेट्रोकन और डीसी रूप द सामलेफ ऑन मिंदर एनर्जी टू स्टेकन इन नेगेटिविटी एंड अफब्रेकन फ्रॉम एल्कार एंड क्रिटिक इज फॉल्कट एक बब्बू यानी डीसी heeft een goede gevolgen mensen. Alleen als hij waar kan maken. Paiswa hei ki na hei mevrouw. DDC daar gaat het om. Dat gaat het om mensen. En meer niet. Dus dat is de zaak een beetje. तो अब देखा जाए भैया हिया बतावे ट्रम्प की ओर हम तरी जाए बैतलांड के चीवा बताई। ट्रम्प खराब ओवर अनेक्सक्सी स्ट्राट फॉर होर्मुज ना नीदरला फान ईरान। हाँ अमेरिका बोले है तुलन जाने स्ट्राट होर्मुज के बारे में जहां सब बोर्ड पास हुए है बोले उखरौन खबितुआ जो ने बोले चाहे अमेरिका के हो जाए के। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बोले है विल फरक्लारन ना दैट ईरान इज वर्सलागन। है डीड ऑपमर्कलिके उपस्प्राक फ्रागन टाइडेंस बाय इनकोस बाय इन पॉलिसी अकादमी इन अमेरिका न्यूयॉर्क में द हुगो फिशनारिस फॉर Witte Huis verklaarde later tegenover Amerika dat Trump een grap maakte en dat er geen plannen
voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole us grap kar traha ki hormus okar ho jayega Amerika ke. Bole sai to kar drom hoi te mu me se nikarenge hoi bhaiya to lun jano hai. Use pasar Groenland me go bedrijf se hua tel khode hai. En dat mag ook niet mensen nadat we Iran hebben verklagen dat een zware nederlaag lijkt. Zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerikaanse grondgebied verklaren? Zei Trump. Daarna voegde hij ernaartoe. Het is echt waar. Trump herhaalde ook zijn eerder bewering. Dat Amerika bole Amerikaanse maritieme blokkade. Waarmee de scheepvaart verkeert. Iranke haven mee wordt tegengehouden. Iran beslist dat de VS de controle over de straat van Hormuz hebben. Bolle het scheepvaartverkeer is door de zeestaat sterk teruggelopen. Hormuz is van groot belang voor de internationale energiehandel. Op het eigen conflict passeren ongeveer 1/5 van de wereldwijde olievoorziening via deze route. Op het eigen nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Washington voert ondertussen ook de economische druk op Teheran. Verderop Amerikaanse minister Financiën ke bole week nieuwe maatregelen tegen Iran zal aankondigen. Volgens hem gaat het om stappen die het land economisch nog verder te isoleren. Mensen te Trump abbe bezig Iran ke bare mee. Hamari janta en wij lijden eronder om de dure benzine, de dure brandstof te gaan betalen, mensen. Maar die koos Suriname mee, Arman Sundermange, loonsverhoging. De regering in Suriname onderhandel kreeg, loonsverhoging. Ke bare mee, go vakbeweging, hega, Rafaxur. Arman Sunder John Hega woordvoerder en Rafaxur zei mange he loonsverhoging van 25% lanti se. Maar lanti bole he bole ham toke 25 na de maar 10% ambtenaren salarissen structuur met 10% aan te passen. O bole hega vakbeweken bole he bole hega. Zo werd voorgesteld om de belastingvrije grens te verhogen naar 9.000 naar 15.000. Want heb je toch een nieuwe jaar te toch een belasting verreken, dan wil je ook een grens verhogen week 15.000. Volgens Sunder is dit voorstel op dit moment niet aan de orde bij de regering. Dat werd hen tijdens de vergadering afgelopen week meegedeeld. Bolle Oehamlo Abbenakker Sakila. Bolle er is geen sprake van de verhoging. Ja, hoi, bhaiya. Ta haan to dal lage ki kursua chari. Maar ab dekho regering bolle hem toke 10% debe. Lanti ke kam kartan ki verhoging. Aur hi mange hai 25%. Beste luisteraars, to ye baat hai. Sunder ke ab dekho bhaiya, Colombia mein aardbeving bhail hai. आप लोग को तो इकर बारे में हम बताई है कितना लोग वहां पे मरल है 280 मेंशन है बद लीफ दार मेंशन और बतावे हैगा अन आरबीफिंग वा 7.4 kostte 280 mensen het leven, bijna 27 gargirge he, verwoest hoege he, zahargane, barka barka rasta, sab tutke saka hoege he, jaisie go rastak namra Gali en Pereira, bole miljarden schade deswame bhaiya, Colombia ke minister joan he, bole he, bahur kritiek paise, बीते हुए हफ्ता में और बोलेगा कराइबी से स्ट्रांग जो रहा आंतर इलेक्शन बोलेगा वीकेंड बिल्डर फर्स्कीनर वारोप तजीन इस दैट है ऑफ द कराइबी से स्ट्रांग आंतर इलेक्शन वास और बोले ओकर ऊपर क्रिटिक के बोले देश में ही हम लोग के इतना आदमी मरल है सब घर भी गिर गए है और जो ने मिनिस्टर है जो घर के बारे में जो है फेस्टन के जिसका नाम है जिम आंद्रेस बेल्ट्रान ओ जाय के स्ट्रांग पे रिलैक्स करे है एकर बारे में ओपोस
oppositie, linkse oppositie, ik een motie van wantrouwen, regering me indien kritiek, kritiek moment besloot vakantie te vieren, bolle etra kritieke, bolle minister van Volksgezondheid ke, huisvesting ke bolle gele vakantie vieren kere, bolle bericht op ik schreef de minister dat hij niet op vakantie was, ik wil een paar uur doorbrengen met mijn vrouw en kinderen, die ik al enkele dagen niet had gezien, bolle Cairo Chuiga van oude lardgen ke bolle nadekeri, bolle ohik mare bolle hem, bolle usab ke dekhat maarte, Shakira heeft zo maar ke financiële steun toegezegd voor wederopbouw schoolen en beschadigd bij hem. Amerika, filantroop Howard Buffalt, het zwaar getroffen departement Kokomeba, ja, Afro-Colombiaanse oorspronkelijke gemeenschap worden, Colombia met hun caprilon hoor, ook een gemeenschap met 2800 school beschadigd bij hen. Choco met mensen op het eigen schoolen zijn ze verbouw geweken. Ik heb er met Shakira aan de journalisten betreft. Je maar 1 miljoen dollar of 865.000 euro toegezegd. Colombiaanse zangeres ego he, bolle otra paisa toke hem debe. Colombiaanse zangeres zei dat ik 1 miljoen dollar was toegezegd voor de wederopbouw. Het geld zou naar de verwachting worden gebruikt voor het repareren van de beschadigde scholen. Kebare me naki ghar me dharie paiswa. Kono zangeres bij jou miljonair he, to 1 miljoen diga. स्कूलिया के बनावे के बारे में हमारे जनता तो आप लोग को बताएं भैया एसएलएम के बारे में बड़ा क्रिटिक है एसएलएम के बारे में एसएलएम रिएक्ट करेगा और ब्रेक ओवर खाओस samenstelling en functie van de RVC. Volgens directie is dat ongewijzigd. SLM kebare me. Oh, SLM Surinaamse RWC bij raad van commissaris doen bole he. Bole hega. Aanleiding voor de reactie. Bole hega. Online publicatie hega. Sora tarike doen ware tijd dharise. Bole hega. Chaos raad van commissaris SLM me. O bole hega naar de aanleiding daarvan. Bole directie, bole gezamenlijk kennis te nemen van een bericht geven. O bole hega ook de functie binnen de raad zijn volgende maatschappij. Bole kutjena verander bijl he. To bari lamba chowda SLM ke baare mein likha gaya hai hamari janta. To hum bole aapko kuch chota roop mein. आपको बता दें भैया नौ आदमी के सूरीनाम देश में नेक फरदाख्तन फरदोरदेल इंसान फरमिशिंग फन ट्वी मनन दुई आदमी लाश भैल है ओकर बारे में भैया नौ आदमी के सभन पकड़ी से बतावे गरे इसे पड़का क्रिमिनल और खानिशासी के बाद शुल्लन ते हैं बरखमात आन देल नाम आनन क्रिमिनल और खानिशासी फोर बरेडिंग हंडलन में बत्रेकिंग अब द वेट फन फर्दोवन द मिडलन uitvoeren van cocaïne of er poging daartoe dan wel hen aanwezig hebben van cocaïne te OM 50 jaar mange hai aanbaris ke jahal mange hai to isab ke bhaiya jahal milal hai to jaise rahega iske bare mein aur aage batayenge bahut bahut lamba chauda iske bare mein bataye gaye hain jo aap log ko hum छोटा रूप में बताएंगे हम जाते हैं अफ्रीका के ओर भैया कोंगो में हम जा रहे हैं तुरुआ पे बहुत बड़ा बीमारी है चलल है एम्बोला के बारे में आप लोग जानो है कोंगो में है दो लक्ष से ओइत इनहित लंग इतना आदमी न मरल रहा और देखता जनता अब की मरल है भैया और ये बात है रिपब्लिक कोंगो में बोले 2325 आदमी मेंशन से लीफन को कोस एम्बोला से दौलक इन खस्कीडिंग जो अमेरिका अफ्रीकांस लैंड के है कोंगोलांस खतों से ओ न अथॉरिटीटन बोले 4945 आदमी
besmet bijl he. Or i doden dag inmiddels hoger radio 2018 of 2020 meer ha. Oes me pe 2299 mensen maar Allah. Op het aanwezig daarmee dodelijkse Congo ooit heeft meegemaakt. Abole abki aur jana maral hai dosto. To iske baare mein bhi bahut lamba hai. Aap log ke hum mul mulle baat batate hai. Ki itra janta maral hai. Aur wo hai Congo mein hamare pyare pyare janta. Jo ek bimari hai. Embola sab bole hai. हमारे जनता तो हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम के समाचार को लेकर भैया वोनन ओपेट वाटर नीदरलैंड के बातचीत है इस नित खुद को जानो यहाँ नीदरलैंड में चलियो तरीबा में मतलब पानी में बोट है वो उन बहुत जहाँ आदमी रहे हैं तो कितना आदमी बोलो तो घर द्वार ना है बोट पे घर बनाई के और वहाँ रहे माँ दत इस नीट खुद को मेंशन वो उन बहुत इस दूरदर दान अन है हाँ तो जेके मालूम ना है तो अब हम बताओ थे आप लोग तो यहाँ दनहाक में और कहाँ कहाँ पे जानो हैं कि पानी में घर बना है वही पे सब रहे हैं तो यहाँ बताए गए वो उन बोतन लेकिन इन मेरल जना है कि खुद कोप है मैं जो घर में हम लोग रहेला उससे महंगा है वो है पैर फिर कांत मीटर एगो बोट के बताल ये फोर और वो यूएस 20% और ज़्यादा भरिए जो हम लोग घर में रहेला हमेदल एगो बोट भी कहा है भैया फिर होंदे सेसन सेस्तक दैसन एरो और हमेदल एगो घर भी कहा है फिर होंदे 94.000 euro betaald voor een reguliere woning. Op het eigen heen. Woonboten zijn inmiddels 94 vierkante meter groot. Tegenover 118 vierkante meter. Boot ik ook maar he, ongeveer 94 vierkante meter. He. Or ik ook ghar he, ongeveer 118 vierkante meter. Te bole ose dekhiye. Te botia aur mahanga pare he. 20% meer vierkante meter bij een gewone woning ligt de prijs. Op bijna 7500 1 vierkante meter te kiniye. तो बताएंगे दोस्तों आलो वोन बोतन जो 2025 में रहा हूफ्स्टाद में verkocht laag in de hoofdstad Groningen, Rotterdam, Haarlem mee zijn er relatief veel verkocht van Orjarabikal Henga, Bollega de Ronde Veen, Wormerland, Weidermeer en mee worden naar verhouding eveneens veel woonweden verkocht mensen. तो कितना आदमी सोचे है कि हम बोटियन में जो घरवा बनल है वो सस्ता है मार आशीषित मेर फिर कांत मीटर इस दात नो ट्यूर्डर में से दन ओ हम जाए तेरी रुसलांद की ओर जनता Opnieuw is een magazijn voor Ruslandse webshop Wilberis door een droneaanval geraakt. Omwille in het magazijn vlakbij de Russische hoofdstad Moskou mee onthoudt een brand die inmiddels is geblust, dat zegt de regionale governor te Rusland met via Oekraïne. Dagen op betek via 620 drones richting Rusland met chalge he, hamare janta. En hier betawe, Iran bole he, bole straat van Hormuz. 19 augustus के ये बात 18 augustus के ये न्यूज़ है स्ट्रैट हॉर्मूस बोले पास ओपन आज फेस अमेरिका हम लोग के जितना ऐस्ट है बोले सब देगा तब बोले हम लोग हॉर्मूस खोला हुआ अमेरिका दूसरा बात बतिया है ईरान दूसरा बात बतिया है ईरान बोले हम लोग खोला जैसे वही के और हुआ अमेरिका बोले जैसे वो कर है लेकिन अब के कर है दोस्तों ईरान तो यहाँ दूसरा बात बोले है
ईरानse parlementvoorzitter bole hai top onderhandelaar hai Mohammad Bakhr Ghalibaf bole hai go speech mein bole hai hij noemde het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van de sancties op olie en vrijgeven van de Iraanse tegoeden in het buitenland. Want tegoeden hier Amerika's buitenland mee, frisker deze, bolle tap hamlo jaike kholap, bolle pahle hamar, jitra sancties tokale oke kool sinds de oorlog 1 februari, Amerika, Israël, aanvalkeren Iran koper varen er nog nauwelijks schepen doorheen. Die leidt wereldwijd tot hoge prijzen, onder meer voor brandstofmensen. Bolle in het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran was afgesproken dat de straat van Hormuz weer helemaal open zou gaan, maar dat is niet gebeurd. Dat akkoord is inmiddels verlopen. Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de straat van Hormuz, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de zeestraat wordt heropen, mensen. To Iran aise bole hai aur Amerika kuch oisen bole hai. Hamas ke or jai bhaiya. Hamas tulon jane hai ga terror groep hai ga Libanon mein. Hamas zegt verder te willen met proces richting vredesdeal. Hoe ze mange vrede kere Iran Israël zijn. Gaza staat mee. Hamas mange vredesplan kere Gaza mee. Ou bole hega onder leiding je Amerika chahin reke. Ou bole die steun is vooralsnog niet. Ou bole hega schoonzoon je Amerikaanse president ke he. Heeft hier de voorbije dagen over gesproken met zowel Hamas als Israël. Woordvoerder Hamas bole hai, Hamsis Kuzem bole hai, tijdspadden en procedurele stappen die nog ideaal in de teel uitgewerkt zullen moeten werden. Oorlog hote hai bhaiya, tulun jano Pakistan ki or hum jai. O Pakistan mein bhaiya, oudjon president wakara, premier ha. Oké, jahal manse saban nikaris omdat u bemaar hai. Tulun jane hai Imran Khan 73 jaar ke. Oké, saban pakad ke ban kar le raha nawara khiring aail hai. To hospital mein bhaiya bahut bemaar hai. O bole hai ga ho kharek Pakistan ke. Bole hai ga Imran Khan ke. Bole 2023 mein vast in veroordeelde in verschillende zaken. Onder meer voor fraude. Partijgenoten Pakistan. Stanke, Tirich Izan bole, familie maken zich zorgen over zijn gezondheid, mensen. O bole hega, u bemaar he, hooggeruif moet gaan binnen 28 uur naar het ziekenhuis worden overgebracht. Tot 16 september blijven. O bole Khan werd 2022 mee afgezet. Sindsdien is hij geconfronteerd met meerdere rechtszaken. Afgelopen december werd hij veroordeeld tot 17 jaar gevangenis voor fraude. Andere zaken gaan onder meer over massamisbruik en opruiming. De oud-premier ontkent alle beschuldigingen en noemde veroordeeld politieke moviesmensen. Toen aanplukken we hem een gietje uit te laten horen.

और दोस्तों ओनली लवर्स के लिए हम कुछ नया गीत आज हम चलाते हैं। हम चलते हैं एक और गीत की ओर और वो है फिर भी प्यार करने वालों के लिए कि बिली बिली की ओर हम जाते हैं।

फॉर द लवर्स के लिए आज कुछ नया गीत हम आप लोग को सुनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ओक एंड रोमांटिक सोफा यार नीख तक भी एक दो को हम सुनाएंगे और बस तो लाइस्टर लाइफ में प्रोग्राम लाइस्टर के और नहीं लेकिन नीख तक का सॉन्ग है जो और फिर से इसको गाया गया है, आओ सुना जाए।

और ऐसा ही लगता है जब किसी से प्यार हो जाता है तो हमारे यारो ऐसा ही होता है।

और चल चले झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है और फिल्म के नाम है झील के उस पार। और नाइटिंगेल लता जी, धर्मेंद्र मुमताज इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों,

और यह फिल्म का नाम है, फिल्म के नाम है मेरे ख्याल से पहचान, और आओ मिलकर सुना जाए ये क्या गाते हैं।

और पैसे की पहचान यहाँ, और इंसान की कोई कीमत नहीं है, और बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं है। और ये गीत जो हम चलाते हैं वो है राजकुमारी गजराज ते हैं, ये गीत है माइती मुकेश इस गीत को गाए है, आओ मिलकर सुना जाए, चल अकेला चल अकेला।

0: अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चलकर माई थी मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग है।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाम, शास्त्रीय काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश की समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं? हम चलते हैं सूरीनाम की ओर और फेहापे की ओर। फेहापे की ओर यानी कि वहां पर अब फेहापे की बस्ती जो है हमारी जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापे का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले है इस बरई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापे ओवरवेगन इंडियन सेवन uit de partij en verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen. Bolle op bereid hij voorzitterschap lewike. Bolle jeb oké VHP ke kandidaat. Bolle stem kari top 1 up stem huiga. Kike voorzitter mani VHP ke. Bolle belangrijk huiga. कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एन बरूक दून बोले जालिक एन ओवरवेकन दल्त सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से, और मथुरा बोले है फोलखंडे यार आने वाला साल में मई में फेहापे के बस्तूर फरकिसिंग होगा। मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फुर्सतर तुलन जानो है चांस तो कि उसका दीवस प्लोसलिंग उफर लेने में से। और बताए गए है जहाँ पे हम लोग के फोर सीटर्स का वार्नीमस तैलक ग्लेन उलर्स आन ते वैसन आल फोर सीटर। और मथुरा खलूफ एर इन इधर खफाल वेल कि फेहापे एगो जबरदस्त एगो स्टर्कर लेदर सवन किस करेगा। और बोले हैगा फेहापे बोले बहुत स्टेबल है स्टर्क हैगा। बोले आल्स वेर अ स्टर्कर लेदर सुलन हेवन hoofdverstuur betalen VHP ke, ki bole 76 jaar VHP ke bestand hai, aur bole VHP bole doormaak in de samenleving, bole narm garam ooch neech, bole sab hum log mee maak kar chukli baati, aur bole VHP uiteindelijk ek go sterker terugkom, bole phir se terug aaye, ekar bare mein under voorzitter joon hai VHP ke Ashish Kumar Gayadin, wo bole hega binnen de partij die bij hem aandringen die bolle hem bij voorzitterschap bolle kie kandidaat aanstel keren kie bolle tenzij je sab kie hem ee kiezen keritam waardoor hij bezig is een goed team te zoeken voordat het eventueel zo'n stap zet. और हूफर्स्टियर्स के लेते महेंद्र गया दीन उस सफा बोले है बोले हम यईस मांगेला कि पुराना मिनिस्टर जो है गणेश कुमार कन्हई बोले आउस अनखस्किक्त कैंडिडेट बोले हुए पार्टी लीडर के। और बोले हैगा फॉल्कस हम बस के कन्हई ओफर खुद से ही kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de voorzitterschap mee mee hoe ik aan verkiezing VHP ke op ke voorzitter benega en bole hega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. और ये बात बोले है मथुरा बोले है उत्तराधीन से बोले हम बाटी। तो ये बातचीत है फेहापे के अंतविकलिंग के बारे में। आप लोग को हम बोली थोड़ा से बताए दे भैया सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है, सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल। और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है, एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया। ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है, पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तवा वही में जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया। सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस्तू द खवान एन फूड तो एक इस नतीलक स्वार बस खादक में से एगो बहुत सिंग भैल है।
और बतावे 16 तारीख अगस्तस के अतवार के एक सेफ सिटी कैमरा मस्त है अंतन द्रख्तर वे बोनी स्ट्रात में ओए में को 48 यार के आदमी जाए के बिको स्ट्रात से निकल है सेंट्रम से जाए के कैमरा मस्त में मार दे भैया तो ओके खा तो अब बवेश खोजे के ना है वट हुआ पे सब लिखल है अप लेवल है कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से देखा अरे नहीं भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सिरना में पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना देसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोल से रखीन जिमोन के बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के यहाँ से हुआ घसकावे है अले पोप सेंशन विश्व फॉर द रेस्ट बोले उस सब देशों में कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले हैं एक बरिस उस सब हो गए है और बोले एक को चीट न फरांद नौ लिख्स बोले हम लोग अपर पटमोनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है डाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नी शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी अंतविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाई से बोले फ्रेड खान जो हम लोग के सलार से दुकान में जो प्राइस से बस्तान सीकर है थे कंसन फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये Dus daar zit hij volgens eigen zeggen, bolle geen wenselijke verbetering. De pikke ik er bare mee bolle dosto, bolle regering, bolle kuchna kare he, bolle stuivertjes verwisselen, andere politieke figuren zitten op de posten, terwijl bolle ohi purana cultuur, bolle ohi masinia chale he, bolle beweer kare he, bolle politici en politiek sponsoren ten goede komen in plaats van rechtstreeks de bevolking, maar bolle ikko verandering na he. Coalitie krijgt langs Piqué, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bolle appen partijbelangen, bolle regering wakker he. Maar bolle janta ke belang me bolle usap huana baitale. Pahle okar partij ke admi ke chahi. Jare ki voordeel banawe ke de gezondheidszorg en onderwijs. Bolle hega Jennifer Simons ke bolle he. Grote testen, Missy Kaba volksgezondheid ke jo minister he. Zelf een van de grootste blunderbare regeringen bij ja Missy Kaba ke. Jo pasteur he. और नाचत आयले उसेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दी से भैया अब बोले एक को वार्ता ना होकर बोले अंदरवेज फॉलोस गजोंथेड गजोंथेड सोर बोले नीच स्टीफ ऑफ ऑर्डर वर्डन खबरा बोले है स्प्रेक दार फन फन अन फॉल्स स्टार्ट सिमोन दे सूट मुत रे शफल बोले सेल्फ सिमोस के चाहे निकल जाए के ओके चाहे सेल्फ रे सफल होए के पीके बोले है बोले रखेरिंग से एक बरिश से बोले उस बैठल है और बोले बेर बेर अपन प्रॉब्लम वा घसकावे है फोर रख रखेरिंग जाए के लुका है के उस सब चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कर ली बोले वही के से नरेद रेरिंग इज सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बिलीव दैट बेटर टू डू Weet vooraf welke problemen er liggen. De kiezers heeft de nieuwe machthebber juist geschoven om de puinhoop op te ruimen. Achteraf blijven vertellen waar het allemaal fout was bij de vorige regering. Orgas KWK, Santoki, Brunswijk, regering problemen wakker is. Obole toedje lele, politiek, dan moet je toch weten. Wat je allemaal staat te doen, Jano, bijna. Of voetballers gaan, bijna Nederlandse, of deze Suriname mee. Of sabke milen, diaspora ke, Surinaamse paspoort milen. Toen hier paspoort kwestie van de diaspora voetbal kan deels bij staatsbesluit geregeld worden. Want Simon bolle paspoort, toen ze hebben intrekt zijn hoeke, of bolle balawato doen hoeke. Deze heb kelwaar kere, paspoort. Sports se bhaiya bolo hoofan de wet nationale hai
tijd. Bolle 14 augustus keer 2026 tijdens vervolgbespreking. Commissie Naturalisatie van Nationale Assemblée DNAK. Ik herbaar mee wat ja heen. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe de jebante voetballerske barimie.

तो दोस्तों अब देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है जिकर नाम है लेस्ली यार फिल्म रोडनी लाइसनर तो ये है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट है और इस सूरीनाम देश में गए लहा और शनिवार से ये गुम हो गया मैं से इस फरमेश सातरा आफों से एक कर पता ना है ये कहाँ है। उसके परिवार उस सबके दोस्तों जो है बोले फ्रिंडन एंड आंद्र बर्त्रोकलन हैवन सीन्स रात के ओके सब ना पाई से ड्रिंगन बरूप करेगा ओम आन है पब्लिक ओम ऐत कैक नारदमान क्यों कहाँ है दोस्तों ओके सब खोजे है बफोन लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वार है फोर सो फेयर बकेंट इस कजीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सौंदर्य सुतार ओकर औरत लड़कन फैमिली कोड़ी का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इकर बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस सिपाही से। तो ये बात है एगो नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रैनन डालवेख में एगो मलाई के नाम है दोस्तों 58 यार का रामोन केर्तो दी क्रोमो ते एकर लाश लेक मिलल है सवेरे सवेरे भैया अन अबेत हीफ आन खत्रोखन ओकर भाई गए लेते की से केर्तो दी क्रोमो सोंदाख नो खसीन अबे अतवार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाई के लेक मिलल है और बोले हैगा अर्श had twijfels over een natuurlijke doodstraf, doodoorzaak. Bolle hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Dat bolle in natuurlijke dood na hij, ook er naak me se khun bhayal hij, en ook er dehi me blauwe plekken hij, te ik er bane me forensische opsporing dienst in schakel bij hij bij de onderzoek werden voor alsnog bolle in braak garwa met nabijl hij bolle letsel op het lichaam zijn vastgesteld en bolle beslag genomen de zaak is over via te pata milal hij ik natuurlijk i dood se namaral hij ab deko bhaiya go nawa dna khabau hij ha ई नौका देना खबाऊ है ई है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडियो हैंक आरोन स्ट्रांट में वो नवा देना खबाऊ है न्यू देना खबाऊ है तो हूँ आप एगो निगम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका देना खबाऊ में काम आदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई आदमी जो नहीं फिर तैयार की है ये भैया अपना दम को तोड़ दिया है। तो ये बड़ा दुख की बात है, काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है, संतो बोमा के बात है एगो 19 बरिस के आदमी यानी कि नीखन तीन यार के एगो प्रोफिसर हैगा प्लॉट सेलिंग भैया अब एगो बेस आई को बोमा वेख में बोले तैदे से केरन बोमा वेख में एगो बेस ओके मारी से और ये लुंडा नीखन तीन यार बाल गोबिन और अपना आंद्रे डेंग भाई ले भैया और बोले द यंग मान बोले ई अतवार के दुई मिला से ब्रोफिस पे जात रहा और बोले एगो त्यूता हिशाई फिशर रहा और बताए गए है बाल गोबिन ओफर बोमा में खरीद इन द रिक्टिंग फॉर मोहम्मद रशीद पीर खानवे तर होक्त
ego pantelige, bolle hega vermoedelijk een rechtswaartse stuurbeweging hebben gemaakt om te keren. Is het man is gumawe, of tijdens deze manoeuvre kwamen de bromfietsen in botsing met de ego auto ooit is oud. Hij is het nakjalker is door 20-jarige door de harde klap liet de balgobit ernstige lensel op. Obole hij overleed mensen jammer. 29-jarige Lundake die hand hoogaya he. Bouwdoekke baante. Bolle Suriname rijbewijs verkeerde tijden van de aanrijding niet onder invloed doen. Beswatcha lautra. Udaru na pilera bhaiya. Oh, bichara. Ke die hand hoogaya. Bahut aanrijding hoe bronfise bhai. Suriname kadensi ke tulon jano he. Feya peyer he. Kadensi bolle ding no kinka next. Simons bolle traha. बोले वो किंग का इसी स्टीम बकी सिस्टम किंग की ना भैले भैया इकर बारे में अर्थेश बोले कदेंसी बोले फॉल्कर आर्नोल्ड बुकरू ओकर नाम बा अर्थेश का नाम बा कदेंसी बोले रखेरिंग ओम इस्ट फरंदर ओम द लेस फन बलोफ्टन दी से टाइटेंस द फरकिसे कंपाइन हिव कमाल. Cadenzi stelde dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek hadden op VHP. Eens op kritiek kregen VHP, kan maar bolle apre, bolle kuchna karise. आदमी के जो उंगली देखिए भैया तो चार गो तोर कंती आवे हैं दस एगो कर कंती में चार गो तोर कंती देखा है जो कोई ऊपर जो उंगली देखियो तो कोशिश करियो कि तू अपन काम मोई से करे है लेकिन सिमोंस रिसलान अपन काम न मोई करे है कदेंसी बोले है. Belasting toegevoegde waarde BTW werd ingevoerd iets meer dan een jaar regering Simon. Verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Belasting John Bolle Hamloon sinds ook heel lang era is een man dat ze terugdraaien kreeg. Maar ik kon terug naar draaien kreeg ik die belasting en ben ik naar hoofd te bereiken. Bolle hij ziet dan aanhouden de steking. Doek aan met prijtje ja he. Bolle den ook kinkie niks meer het dag regering DC uit Mickey den Kinky One Sunny. Chan was niet goed toen hij alle subsidie afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer train trekken. Dat Mickey den Bing regeert dat hij Chan ben Pina afvolg. Bolle Chan dherer aan BTW. Chan subsidies op aftrekken leraat deze bullet raar naam hoe je kaam kan zijn. Bolle wo kinka systeem. Te bolle abtukken tja hij BTW ja terugtrekken reke. Kie het mik BTW na hoef bereke. Want Chan dhal leraat toen om bolle raar naam hoe je te kinkie karna. Bolle hij ga subsidie joan Chan sub intrekken leraat. Wie loke deske paisa bachawe katien. Te bolle kahe na tu pin subsidie kare he. Bolle kutsi sub na kari se. Santoki Brunswijk 2020 mee. Bolle financiële ravage doen is op kalera heeft overgenomen. Bolle ga IMF ze bolle op programma's chansen toch hier in Zwijk kalera. De huidige regering heeft echter geen IMF programma om uit te voeren, maar desondanks zijn verbetering niet merkbaar. Bolle is op de verplicht binnen IMF ke programma verbeter keren en volg kreeg bolle toch is ze bolle kutschna karpaise. Bolle ga komen jullie het volk uitleggen waarom jullie hiermee doorgaan. Al dus VHP'er, Cadenzi vindt het jammer, ki janta jon he, politieke partij houden dan van Surinaamse volk. Als voorbeeld noemt hij het geval van massale vissterfte jon ser makame bhail he, op bolle officiële oorzaak kan worden aangegeven. VHP'er bolle he, bolle de staat in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat een kritischer is naar de VHP toe. Toen Jesse Babaat Cadenzi bolle code rood in je aheer kondre abode. Al dus Cadenzi dus to aap log ko hum ek geet sunate hai. To abhi hum turant wapas aa jayenge.

और आगे को अपन समाचार को लेकर हम तुरंत चलते हैं निकेरी की ओर दोस्तों। वहां पे निकेरी में निकेरी की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे। तो निकेरी के जोन देसी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से निशा कुर्बान बब्बू, निशा कुर्बान बब्बू देसी है निकेरी के। और उमांगे हैगा निकेरी में और काम होवे मेयर वेरक माकर फान बेहतर वीखन रास्ता जोन है बोले और बेहतर चाहे होवे के। और बोले जोन यंगरे है उ सबके काम भी चाहे मिले के वेरा खलीखन है भी चाहे होवे के। बोले जो हाइस फेस्टिंग है बोले राइस सेक्टर के अंतविकलिंग बोले सब चाहे फर बेहतर होवे के। बोले फोकस हार इस हिन एंकल सामे लीफिंग ओइ 100% अफ एंड मुतन ओवर है instanties en burgers gezamenlijk blijven werken aan de vooruitgang. तो इस सब चीज तो बड़ा बढ़िया देसे ही सोचे है। और अब सोचे तो बाटो तो अब चाहेगा देसे ही के करे के। कुर्बान बब्बू बोले है बोले आद सांत वेखन मुतर ओक आन खपाक्त वर्दन बोले वेखन अथॉरिटी कर वर्क इन मेडिस इन फर्किल ट्रायक्टन। और बोले है गा कुर्बान बब्बू बोले है देसे बोले ना दुखरक विल इंसेटर फॉर यंगरन। और बोले फोकस हार मुतर बोले मेर बानन और वेरा खलीगन है चाहे होए के निकेरी में। स्लाइस जोन है भैया बोले बलांगरेक फॉर राइस सेक्टोरन। कुर्बान बब्बू बोले है बोले बलांगरेक प्रियोरिटी थेगा जोन स्लाइस है चाउर के जोन धान आदमी बोवे है ओके सब रीन फेर करे के। बोले दृंगत हेयर स्टाइल नो उदक है नो सेक्टर फर्दर कुनन अंतविकलन। तो बड़ा अच्छा बात है। तो यहाँ पे बताए गए है बोले है बब्बू बोले है कुर्बान बब्बू बोले है बोले ऑफ द अखेंडा ऑफ द मार्क इज फॉल्कन्स आंध्र इनोवासी तो जो बाजार है वो चाहे रीन फेर करे के। बोले द आंध्र कनाल पॉइंट इज द कोर्ट ऑन फक मेंशन फक में से बोले बहुत कमती है बोले जो बहु में बा अब रेस सेक्टर इन इंस्ट्रक्टर दान आरबेस क्राफ्टन फॉल्स डीसी मुइलक इस तो फिंडन। कुर्बान बब्बू बोले है बना दृक्त दैट दिस नीड अलेन इन निकेरी स्पेल मार अन लैंड के प्रॉब्लम इज मेड दैर फॉर वर्डन बुटलांस आरबेस क्राफ्टन आंगेट्रोकन और डीसी रूप द सामलेफ ऑन मिंदर एनर्जी टू स्टेकन इन नेगेटिविटी एंड अफब्रेकन फ्रॉम एल्कार एंड क्रिटिक इज फॉल्स टेक बब्बू यानी डीसी heeft goede gevolgen mensen. Alleen als hij waar kan maken, pijswa hij kina hij mevrouw. DDC, daar gaat het om. Dat gaat het om mensen en meer niet. Dus dat is de zaak een beetje. अब देखा जाए भैया हिया बतावे त्रिम कोर हम तरी जाए बैतलान के चीवा बताई त्रिम खराब ओवर अनेक्साक्सी स्ट्राट फॉर हॉर्मुज ना नीदला फान ईरान। हाँ अमेरिका बोले है तुलन जाने स्ट्राट हॉर्मुज के बारे में जहां सब बोर्ड पास हुए है बोले उखरोन खबितवा जो ने बोले चाहे अमेरिका के हो जाए के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले है विल फरक्लारन दैट ईरान इज वर्सलागन है डीड ऑपमर्कलिके उपस्प्राक फ्रागन टाइडेंस बे इन कोस बे इन पॉलिसी अकादमी इन अमेरिका न्यूयॉर्क में द हुगो फिशनारिस फॉर Witteheid verklaarde later tegenover Amerika dat Trump een grap maakte en dat er geen plannen voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole us grap karatraha ki hormuz oker ho jayega Amerika ke. Bole sai to drum hui te mu mase nikarege hui bhaiya to lon jano hai us ap asar Groenland me go bedrijf se hua tel khode hai en er mag ook niet mensen nadat we Iran hebben verklagen dat een zwaar een nederlaag lijkt, zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerikaanse grondgebied verklaren.

तो दोस्तों इसी सॉन्ग से आज के समाचार को हम और समाप्त करते हैं। एक लास्ट ब्रेक थे दोस्तों, फीरन देर तक बूतस हो गया है, फीरन देर तक बूता मिलल है फ्राख्त वाहन के अप्स को तू कंट्रोलर करे ओ टूरिंग कार्ड के नीलांग के बांचित हुए है रेक्स वान संस्थान सोमार के फीरन देर तक को बूटू लीके से फ्राख्त वाहन के और टूरिंग कार्ड के जो मेर वेड़ ब्रुक पे चलाए रहा। Het was de eerste dag dat motoragenten van de politie controleerden op het verbod op zwaar verkeer te handhaven. Ubrukipa se nam mag hege zwaar verkeer jaike. Aur isab chalai raha motoragenten sabke pakri se bhaiya. Bole hege touring cars over de verzwakte brug reden. Als de chauffeur werd betrapt, leidden agenten het voertuig van de weg af naar inspecteur van Rijkswaters. Staat. Dit schreven meteen een boete van €500 bij jou. Hoe direct ligt die? Toe, hamare dosto, yahan tak tha hamara dis aur vidis ki samachar jo aap loon suna hai. Yahi aasha umeed se ki aapko hamara समाचार जरूर अच्छा लगा होगा। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आप सबको हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाब और आदाब सलाम नमस्ते। हर काम के लिए हर अटफर्टेंसी के लिए

हरिओम, मेखिदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं यारो, सरनामी संगीत लेकर। यही आशा उम्मीद है कि आज का सिलेक्शन आप सभी को पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी संडे शाम, और उसके बाद रात्रि पेश है मैथ हेल फील इस्तर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेबलिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान अख्तर फ्रेडा तेरस कंतोर उर अब दुफोखंदे टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07-362-2077 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखीत है उनसे क्वालिटी इस आउट गारंटी एंड नेचुरली फूड से आउट लेकर दरबाई फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। तो हमसे पहले आप श्रोताओं ने 31 सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके हम लोगों का टीम लीडर वन एंड ओनली मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन जी ने आप श्रोताओं के पेश किया। इस तौर तरीके से भाई जॉनी जी सदियों से आप श्रोताओं को सेवा करते आ रहा है। ये आशा उम्मीद है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तय दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई जॉनी जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो। विवाह संस्कार तो बीत चुका होगा ना, कंगन भी छूट चुका होगा। जो भी खुशी के दिन सभी आप मिलकर मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को और आप सभी के जितने मनोकामनाएं हैं, जितने नेक इरादे हैं ना, सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपनी फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार या आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। अनित फरखीत है, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना। फनात बीतर काम आप कामयाब हो, तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और हो सकता है कि आप आज या कल कामयाब नहीं हुए किसी कारण, तो मोरखे स्वेर अंताख बंधु, चिंता के कोई बात नहीं है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ट्रोवल
बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है कि कामयाबी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो, मेहनत तो है दौलत का यारी। सो बिलो यू ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू नो इट ऑफ ही फेबो तो लेट है Never give a brother an assisa. So solo bilo bi on blessings to all of you. And natuurlijk bedankt voor het luisteren. Als deze mee perwees weet, voelt hij weer zijn zoeswagen. Een fijne vakantie. Blijf luisteren naar Faun in de Stani Radio. You're gonna like it. And that mean ik. Or hoe zakta ik ja, deze kuchor ke bidesh yatra pe jaar he ho. Op zoek naar meer warmte, तो आपको भी एक शुभ यात्रा, फैन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को ओपन फकांसी एड्रेस इंटरनेट के लेयर द्वारा, ओपन लैपटॉप टैबलेट ऑफ स्मार्टफोन। तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बेंट यू एंड ब्लेव टू फॉन अलस ऑफ द होस्ट ऑफ न्यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दिस नेचुरली हमारे देन हाक सरकार वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। साथ ये प्रोग्राम का शुरुआत तो संदेश मैं करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एंड फिल्म ललकार 1977 कंपोज बाय डॉक्टर कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सरा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नॉट ऑल दैट लीव कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो। खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक सरनामी प्रोग्राम हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। पहला अध्याय में हमेशा तेरा बैठक गाना, कुछ सुपर हिट सॉन्ग्स सेलेक्ट किया हूँ, और दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। अपने लोग हैं, अपने देश के कलाकारें हैं यारो, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी है, एंड लास्ट यूज फंसीफ तो अह अलीन मार न्यू नंबर्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। रवि साहब हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत।

गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो साथियों, आज का ये हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, 23 अगस्त 20 सेशन 20 सोमदाह मेरा का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार, उस्तादों का उस्ताद, बैठक गाना और सेमी क्लासिकल म्यूजिक का महागुरु, डॉन एंड ओनली माएस्ट्रो रॉबी उदितराम जी का ये सुपरहिट सॉन्ग ओ बेदर्दी स्पेशल।

शाबाश शाबाश शाबाश। महान गायक हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्ताद का उस्ताद डॉन एंड ओली मैस्ट्रो रॉबी उदित्रम जी। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है साथियों। 15 मिनट गुजरने वाला है, 5 बजकर स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 20 और 21 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, थोड़ा बहुत धूप भी निकला है तो मौसम भी हसीन है और जोर तोर से शरनामी संगीत भी चल रहा है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो क्रिस राम खेलावन जी का बिल्कुल नया सॉन्ग न्यू न्यू न्यू पायलिया।

इंटरनेशनल कलाकार हमारी सूरीनाम देश का उस्तादों का उस्ताद मैस्ट्रो क्रिश राम खेलावन जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को साथियों, एक और जबरदस्त महान गायक हमारे हॉलैंडीज डेनहाउशर का द लायन ऑफ बाइट गाना उस्तादों का उस्ताद मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और उनका ये बिल्कुल मजेदार नए सॉन्ग जो इस वक्त काफी हलचल मचा रहा है जहां जहां पर हिंदुस्तानियों बसा हुआ है, वर्ल्ड वाइड डायस्पोरा। हमारे महान फनकार जिस पे हमें नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए, द वन एंड ओनली हमार मशीनिया सुनाने वाला है आप सभी को द लायन ऑफ बैठ गाना।

शाबाश शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडीज का द चटनी क्वीन द वन एंड ओनली उस्तादिन श्रीमती बिजानवती चैतु जी। 5 मिनट गुजर चुका है 5:30 साथियों, तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में कुछ अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। ये अशोक ही लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे, तो जरा गौर फरमाए। क्या है द बरुख्त डिक्टेटर अलर्टेड फ्रॉम डच्लैंड आदोल्फ हिटलर जी ने भी कुछ कहा है जिंदगी के बारे में, और वो कहा यारो कि ग्रोट लुइखनार्स सैन ओक गवेल्डिग टोफनार्स कान क्रोपोर। हम लोगों का अपना बापूजी द ग्रेट महात्मा गांधी जी कहा है एंड इट इज ओक एंड हेल गुयोर अलशिदुत वच लुइक फिंद hoef je nooit meer te werken. Mahagyanis Sri Albert Einstein ne kaha hai, en ook een hele goeie, kort maar krachtig hoor. Aur Albert Einstein kaha hai saathiyo ki in tegenspoed maak je kennis met jezelf. Nog een hele belangrijke en beroemde persoon uit Amerika, de great Abraham Lincoln, ne kaha hai yaro ki, wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat. Onthoud dat hoor. Dus alles wat je doet, doe maar en ben of word nooit bang om fouten te maken. Eentje van de beruchte dictator uit Duitsland, Adolf Hitler, en ik ga hier ook in. Het vermogen van de mensen om te onthouden is zeer zwak ontwikkeld. Het vermogen om te vergeten is enorm. Een Joodse spreekwoord luidt als volgt, staat hier ook in. Wie vol van zichzelf is, in hem is geen plaats voor God. Eentje van Herman Vinkers, Rokhaiki, een vijand blijft je altijd trouw en geeft zielsveel om dat leven van jou. Nog eentje van Albert Einstein. It's een beetje lang, maar goed om te onthouden en om te weten. Albert Einstein heeft eens gezegd, staat Hilke, als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terechtkomen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek. Ai, wat ze met je mee. Nog eentje van de grote voetballer aller tijden van Nederland, Sri Johan Cruijff, ne kaha hai. Je kan ook goed spelen zonder een bal te raken. Een doordenkertje. En de laatste van vanmiddag, kahai Johan Cruijff, Jineki Jaroki. Je moet een gat voor je laten vallen en er dan zelf in lopen. Ik heb hier kuch gyan ke baathe sune, jo kuch saathiyo hum logo ke bite hue dino aur kuch is zamane mein kehkar chale gaye yaro. ये यशो अमीर लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज
का नौजवान कलाकार जो काफ़ी नाम इंटरनेशनल कमा चुका है, खास करके जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड वाइड हम लोगों का डायस्पोरा बसा है। धवन डोली नौजवान कलाकार प्रिंस चार्मिंग द ग्रेट शिवम राजा राम मीत राम नारायण दिस हॉलैंड मीत ट्रिनिदाद शिवम राजा राम और रेमंड राम नारायण जी का ये बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन ना तू रोना।

Ja, wat hey, Holland met Trinidad. Raymond Ramnarayan aur Shivam Rajaram ka ye super hit song aap shrotaon bhi sun rahe the. New. 15 मिनट रह गया है 6 बजने में साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 23 अगस्त हो गया है यारो, सो हाथ हाथ हैं और देखा जाए किन्द्रेन देन हाँ है नोक स्टेज वैकेंसी स्कूल वैकेंसी एंड या इट गाट ओक ओवर एन वीक है dan moeten ze weer op school. Angela Bayan, nou Johan Kalakar, hamare Hollandese ka jo kuch dino hue hai, Suriname des se yahan aaya, aur kuch dino mein hum logo ko itne jabar jabar gaane se hum logo ko khidmat kiya, aur saath hi saath kaafi dino mein itna popular ho gaya hai. अभी लोग इसे बुलाते हैं द किंग ऑफ बैठक गाना रॉक, बजाते हैं ये लोग। तो ये उनका ये बिल्कुल नया सॉन्ग है मैस्त्रो सुजल उमराव जी का बालापन से, मिलके सुनते हैं, जबरदस्त सॉन्ग है, एंजॉयड म्यूजिक, सरनामी संगीत स्पेशल हमारे सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

जबरदस्त सॉन्ग और जबरदस्त कलाकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का नौजवान कलाकार मैस्ट्रो सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग और ये भी खास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं जोर तोर से सरनामी संगीत। आप सुन रहे हैं एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का अग्रियार 70-80-90 बैठक गाना का जबरदस्त उस्ताद इन द ग्रेट मनराजी लक्ष्मण जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये ऐसे मौसम के बारे में।

0: Wansch, hemari Surinam, deze al in deze kamer, Sjoer, Ganewali uit de jaren 70, 80, 90 en dichtbij 2000, 4 decennia lang, heeft ze ons getrakteerd op lekkere chutneys en ook heel veel bisaike Ghana. Ik, Jabarjist Sangeet Gharana mein ye mahaan Ganewali ki janam hui thi. नहीं तो फरखेत इकरवर का भाई सुरीनाम देश का चैंपियन सिंगर था उस्तादों का उस्ताद मीर बकेंत अज द गिरी गिरी महाराज लीड सिंगर फ्रॉम द ओराइन बैंड गवेस उस्तादों का उस्ताद श्री सामी प्रसाद साधु जी के मैं बात कर रहा हूँ ही फिर प्राइस खवाना वॉज एन फ्रॉम द बेस्ट क्लासिक सॉन्गर्स फ्रॉम सुरीनाम अलर तेड जिसे लोगों ने कहा. तो साथियों यही तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया. अभी आप विज्ञापन देश विदेश का समाचार सुनिए और उसके बाद मैं कार्यक्रम को जरूर आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों दूसरा अध्याय लेकर हमारे सरनामी संगीत का. तो स्टे ट्यून ऑन, कहीं जाना मत. यस यस यस एंड नो हाउस फुल टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू. After the break.
1: Live vanuit Den Haag. Waarom Hindustani Radio?

फागुन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 23 अगस्त 2026 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और ये भी फागुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स ससलो बिलो बियॉन्ड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक विदाउट फॉर हेट लेस्टरन। एक मिनट गुजरने वाला है 6:00 तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे देंक ऑन फागुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फागुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलीडेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल फन मांडक तो फ्रेडक तेनिस कंटोर उर अब दो फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-365-2277 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फागुन हिंदुस्तानी रेडियो। यूवेन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रिक्लाम बनाते रहना और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है। और इसके लिए आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं को हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है ना तिलक बदम। बैंक नो खेलित फन फागुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड वी हैव ओक उन्स एक कराओक टीम फन रेडियो फागुन वार हेल फेर ओमरूपर्स ओक लाइफ अन इट सिंग सेइंग। Dus volg onze social media en onze omroepers, dan hoort u of ziet u zeer zeker heel binnenkort waar wij live voor u gaan zingen. Dwaabjaker is chota sa mota sa jo faun hindustani radio ka parivar ban chuka hai aur bante ja rahe hai, usme aakar aap bhi shamil ho jaye. Sabhi jankari iske bare mein aap taar kare maandag tot vrijdag tijdens kantoor uren. Op dit nummer 07-365-2247, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, de one and only maestro Johnny Number One. Waar bij jullie sigil hem ook aan member bene, oor ook op die banai. वर के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का और आज का ओपनिंग सिलेक्शन लेकर आ रहे हैं साथियों हमारे सुरिनाम देश का जबरदस्त गायक द वन एंड ओनली मैस्ट्रो फारिस बरसाती फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेशन द स्टार्स। मिलके सुनते हैं बॉलीवुड ब्रांड

Beautiful song, gorgeous song from the music formatie The Stars, Organewala Tha, lead singer, the great Faris Barsati ji. 10 मिनट गुजर चुका है, 6:07 साथी, और आप चुन है आप ही का हैप्पी हैप्पी स्टेशन फ्रॉम दी हेग सिटी, द वन एंड ओनली फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और जोर जोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान एक जबरदस्त गायक जो कुछ दिन, काफी दिन हुए हैं हम लोगों को छोड़ के, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनका नाम इतना जबरदस्त है कि अभी तक हमारे सूरीनाम देश में रोजाना रेडियो पर ये महान फनकार के गाने लोग चलाते रहते हैं, और हम लोगों को भी अगर मिल जाए फुर्सत तो कभी लोग भी यहाँ ऑनलाइन देश में चला देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो नदीम खान जी के, ये ब्यूटीफुल सॉन्ग रीअरेंजमेंट बाय माएस्ट्रो ज्वाला। रुक जाना नहीं,

गायक हमारे हॉलैंडीज का आइडिया 70 80 90 geboren in Pakistan और कितने गाने हम लोगों के लिए गागा करिए छोड़कर और बड़े ही कम उम्र में भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके यादें अभी तक हम लोग ताजे रख रहे हैं उनके गानों के जरिए। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का मैस्ट्रो संजय जोधा जी को लाते हैं प्रोग्राम में, उनका साथ दे रहा है मशहूर गायक रणधीर बद्री जी, और ये सब मिलके सुनाते हैं आप सभी को चटनी मैशअप द्री।

Ja, wat hey, shabash, music by Selecta Beats. Chutney Mashup 3 by Sanjay Jodha, Randhir Badri, Satvika en D-Walk. Nominated hai kya hai, saathiyo, 6:30 bajne mein aur aap chun hai, Fahun Hindustani Radio par, Jodhpur se Sarnami Sangeet, aap sun rahe hai, dusra bhaag, Indian Pop. Music from Suriname and Holland. अगला बयान एक और मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का, The Melody Queen from Holland. The one and the only मधु लाल बहादुर सिंह जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को एक एवर ग्रीन सॉन्ग आउट द फिल्म सजा 1951 लता जी का गाया हुआ है अति सुंदर बयान कंपोज बाय एस डी बर्मन अल्फाजे है साहिर लुधियानवी जी का मदद के रोड्स है बखलेट दोर हित बरुंड ऑर्केस्ट आउट नीदरलैंड साउथ हॉलैंड सिम्फोनी ऑर्केस्ट के साथ आप ये अति सुंदर बयान एवरग्रीन सॉन्ग सुनिए तुम न जाने किस जहां में मधु ऑप्शन बेस्ट

is natuurlijk, natuurlijk een applausje waard voor onze beroemde zangeressen uit Nederland, de Nightingale from Holland, the one and only Madhu Lal Bahadur Singh. En op dit nummer werd zij begeleid door het Zuid-Hollandse Philharmonisch Orkest. Ja, hey साथियों, 6:30 बजने में और आप चुन हैं आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर धनहंसर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेस यानी 23 अगस्त 2026 का यह हसीन रात्रि का प्रोग्राम. अब आप लोग जरा दिल थाम लीजिए क्योंकि अब मैं आप सभी के खिदमत में पेश करने वाला हूँ आप सभी का यारो का यार जिगरी दोस्त और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त अनाउंसर साथ ही डॉन एंड ओनली अनिल सरजू जी को लाते हैं प्रोग्राम में. श्री नाम देश होने देश का जबरदस्त गायक, उनका बिल्कुल नया सॉन्ग कुछ दिन हुए निकाला हुआ है और देखा जाए महान संगीतकार ज्वाला का संगीत है. लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी का गाया हुआ ये सुपरहिट सॉन्ग अखियों के नूर बाय मैस्त्रो अनिल सरजू. क्या बात है भाई, ब्लेसिंग्स है सोसलो बिल अंत ब्लेसिंग्स नतीलक यारों का यार और जिगरी दोस्त भैया अनिल सरजू.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का और हम लोगों का अपना अनोखा साथी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का जबरदस्त अनाउंसर और गायक द वन एंड ओनली मास्टरो अनिल सरजू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। म्यूजिक री अरेंज बाय मास्टरो ज्वाला। 2 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:30 बजकर तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चांद।

कैसे किया है यारों कि एक बार प्यार वाली फीलिंग्स आ जाए। अगर एक बार प्यार वाली फीलिंग्स आ जाए तो सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहना मुश्किल।

कितना करीब लाऊं मैं, इससे ज्यादा तुम्हें और कितना करीब लाऊं मैं, कि तुम्हें दिल में रख कर भी मेरा दिल नहीं भरे।

जिंदगी का सफर है, कभी खुशी है और कभी गम है। हर पल को जी ले बंधु, हर पल को जी ले, क्योंकि वक्त रुकता नहीं है मेरे प्यारे।

शख्स पर चाहत खत्म कर दी। हमने तो एक शख्स पर चाहत खत्म कर दी, अब मोहब्बत किसे कहते हैं हमें मालूम नहीं। यह भी होता है यारो, बोले मोहब्बत ही खत्म कर दी। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हम लोगों का हॉलैंड देश और सूरीनाम देश का uit de jaren 70, 80, 90. Maestro Michel Letchman die kolate hij programme en we sonate hij Mastana Orchestra Kefulsa door Sangeet per Kali Nagaria.

Eerste ga ik uit de jaren 70, 80, 90 begonnen bij Pandero, daarna bij Mustana, ook heel veel shows gegeven. De one and only maestro, Michel Lechman, die beautiful avance mee, die zijn er bijna absoluut al, wie zijn rete. Hindustani Radio पे आप चुन है साथियों रविवार का रात्रि का प्रोग्राम बैठक गाना तो आप सुन चुके अब आप सुन रहे हैं सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक अगला बयान जबरदस्त गाने वाली फ्रॉम हॉलैंड रोटरडम द चटनी क्वीन और क्या क्या क्वीन नहीं है ये महान गाने वाली द ग्रेट अश्नी माता दिन जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को रुला के गया सपना मेरा

के गया सपना मेरा क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग और गाने वाली थी हमारे हॉल इंडीज का मशहूर गाने वाली द ग्रेट अश्नी मतादिन और संगीत देने वाला था मैस्ट्रो ज्वाला। 15 मिनट रह गया है साथियों 7 बजने में। अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग है खौ औ एड यार तख्तख और लाते हैं प्रोग्राम में मशहूर गाने वाला हमारे हॉलैंड देश का सूरीनाम देश का एड यार तख्तख 90 और 2000 मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन जी का ये जबरदस्त सॉन्ग द इंडियन डायमंड्स स्विंग टाइम 1967 का ये ब्यूटीफुल हिट सॉन्ग है जिससे आप लोग जरूर कह सकते हैं हियर मी। मैं दिन में मेरे से एक डोर गब्रोक बाय इंडियन डायमंड्स।

स्थानीय रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। अनतिलक बतंत फॉर हेट लाइस्टरन। दो मिनट गुजर चुका है 7:07 और आप चुन है आप ही का हैप्पी स्टेशन पर देन हाशर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अब से लेकर 8 रात्रि तक only nine superhit songs from the Bollywood film industry. जो भी रेडियो का काम होना देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाए से इश्तिहारे जरूरी खबरें देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सभी जानकारी अपनो सीमित ड्रिफेंस तक 2027 अफेयर तक कांतोर और स्टूडियो कतार का नंबर है 2027 तक। जो भी रेडियो का काम होना देंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंटिनो खलित फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बीती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने औरों को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। We have ook onze eigen karaoke team waar heel veel zangers en zangeressen live zingen. Karaoke en natuurlijk bent u van harte welkom op onze optredens. Volg onze social media en omroepers, dan hoort u of ziet u heel snel waar wij binnenkort voor u live gaan zingen. En daar bent u dan van harte welkom. Dus aap hi jild se jild is chota sa mota sa jo faun Hindustani radio ka parivar bante ja raha hai aur jo kafi ban chuka hai aap bhi aakar usme shamil ho jaye। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने सीमित डिफेंस से 2047 वर्ति ऑटोमेटिक डोर फरबंदन आर ऑन्स टीम लीडर डॉन एंड ओनली माय एस्ट्रो जॉनी नंबर वन। तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रो को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को तह दिल से कोटी कोटि धन्यवाद क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ और एक जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में, काफी बार सुना चुका हूँ आप सभी के, लेकिन लोगों के गुजारिश पर एक बार फिर ये ब्यूटीफुल सुपर हिट सॉन्ग्स सॉन्ग दोर मलकाए हुस्न मलकाए संगीत द ग्रेट मधुबंती बख्शी साथ उसकी दे रही है दिव्या कुमार और सचिन जिगर म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर सचिन जिगर के साथ। और अल्फाज है क्या बात है, अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना। द ग्रेट लेखक इस जमाने का अमिताभ भट्टाचार्य जी आज की रात अनुमर ऑम आउटेट फ्रॉम द होडन।

क्या बात है, मख्तक नंबर और आज की रात इन फिल्म स्त्री 2 राजकुमार राव और तमन्ना भाटिया का ब्यूटीफुल सुपरहिट मूवी देखा जाए। महान संगीतकार सचिन जिगर के सांच पर अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाजे और गला, क्या गला है, मधुबंती बख्शी मलकाए हुस्न मलकाए संगीत साथ दे रहे थे दिव्या कुमार और सचिन जिगर। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो हैं साथियों, कुछ नगमे आज रात के लिए मैं चुना हूँ अरफान देस खौ औ, और ये भी सुनने वाले के रिक्वेस्ट पर। एड फिल्म नकाब अन खौ औ जावेद अली जी के ब्यूटीफुल आवाज में समीर का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज एंड अरेंज बाय द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मैस्ट्रो प्रीतम चक्रवर्ती, जावेद अली ऑप्शन बेस्ट इंफेंस एंड अलर बकेंस्ट एंड बरुमस्ट नंबर एक दिन तेरी राहों में।

Julien Ewald Enigma en ook om nog kippenvel erbij te krijgen uit de film Nakabe. Mahan Gaik Javid Alike Awans Mee, het is een Rubiana Pesun Rehete, geschreven door Samir en gecomponeerd door Preetam Chakravarti. सोराम ने ट्वीट ही हो चुका है सात बजकर और अगला बयान एक और जबरदस्त गायक इस जमाने का द ग्रेट सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर विशाल मिश्रा जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आज भी कंपोज एंड अरेंज बाय द मैन हिमसेल्फ और लिखा है कुछ अल्फाज भी विशाल जी मिलकर कौशल किशोर और यश आनंद जी के साथ मिलकर सुनते हैं ग्रेट सॉन्ग.

और इस बार लाते हैं इस जमाने का एक और जबरदस्त गायक द ग्रेट अंकित तिवारी जी को, महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर अंकित तिवारी का ये गाया हुआ और कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर बयान खसरीफ दौर अभिंद्र कुमार उपाधव फ्रॉम द मूवी रॉय, तू है

टिफू सॉन्ग टू है कि नहीं, एक जबरदस्त मूवी रॉय। और इस फिल्म में रणबीर कपूर और जैकलिन फर्नांडिस ने काम किए हैं। महान गायक अंकित तिवारी जी के आवाज, उन्हीं का संगीत और लेखक है अभिंद्रा कुमार उपाध्याय।

मिनट बाकी है जी, 7:30 बजने में साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है और भाग भी रहा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान एड फिल्म जब तक है जान, महान गाने वाली हमारे पंजाब की द मैरिड क्वीन फ्रॉम पंजाब हर्षदीप कौर को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को। गाने का बोल है हीर, महान संगीतकार, इनका बैनाम तो दिया गया है इस वक्त द ब्लैक अमाडेस फ्रॉम एशिया, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए महान संगीतकार ए आर रहमान जी का ये बैनाम है, निकनेम है, उन्हीं का संगीत है ए आर रहमान जी का। और महान लेखक द ग्रेट गुलजार जी के अल्फाजे उन्हीं का लिखा हुआ ये फिल्म है। तो मिलकर सुनते हैं फिल्म जब तक है जान, ये अति सुंदर दिल को छू लेने वाला बयान है हीर, हर्षदीप कौर।

दिल को झकझोर के धर देते हैं ऐसे ऐसे नगमे, अति सुंदर बयान है। और ये भी मशहूर गाने वाली फ्रॉम पंजाब, द नाइटिंगेल फ्रॉम पंजाब, हर्षदीप कौर जी के आवाज में। और क्या बात है, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ है अति सुंदर बयान खसखरीफ। और क्या बात है, द ग्रेटेस्ट स्क्राइबर ऑल टाइम फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, मैस्ट्रो गुलजार। तो साथियों, 3 मिनट गुजर चुका है, 7:30 बजकर कुछ आखिरी शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए, कुछ 2 लाइन शेर्स है साथियों। ये तो खूबी है 2 लाइन शेर शायरी का कि इतने कम लफ्जों में पूरी कहानियां लोग सुना देते हैं। चौकन और अर्ज किया है साथियों, कभी पिघलेंगे पत्थर भी मोहब्बत की तपस्या पाकर। क्या बात है, कभी पिघलेंगे पत्थर भी मोहब्बत की तपस्या पाकर, बस यही सोचकर हम पत्थर से दिल लगा बैठे। आज फिर उतरा है दिल पे काफिला गम का, आज फिर उतरा है दिल पे काफिला गम का, खूब रोएंगे रात तो अपनी है ना। सुन मेरे दिल की जुबां कहती है क्या तुझसे ऐ जाने जा, सुन मेरे दिल की जुबां क्या कहती है तुझसे ऐ मेरी जाने जा, बैठी रहो सुनती रहो सीने पे सर रख कर के ऐ जाने जा। तजुर्बे ने सिखाया है मुझे एक नई बात, तजुर्बे ने सिखाया है मुझे एक नई बात, पुराना दर्द भुलाना है तो नया दर्द को पाल लो। फिर नहीं बचते वो दिल जो एक बार उजड़ जाता है, कभी कभी बस जाता है। फिर नहीं बचते वो दिल जो एक बार उजड़ जाता है, कबर जितनी भी संवारो, कबर जितनी भी संवारो, कोई जिंदा नहीं होता यारो। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, मेरा दर्द मेरा ही दर्द था, मेरा दर्द मेरा ही दर्द था, बड़ा दर्द हुआ ये जानकर। तो ये था कुछ आखिरी शेर्स। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, इस जमाने का मेरे ख्याल से द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस फ्रॉम इंडिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, इस जमाने का, दैट इज मैन मीनिंग, और मैस्ट्रो पापों जी को लाते हैं प्रोग्राम में। महान संगीतकार सैफ अली जी के साज है और अल्फाज है आयुष जी का, मिल के सुनते हैं ये अति सुंदर बयान। क्या बात है पापों, द LSD म्यूजिक।

सुंदर बयान और ये भी सैफ अली के साज और संगीत पर आयुषी यारा का ये अति सुंदर लिखा हुआ बयान। खुसोंग दौर इस जमाने का जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द मैन विद गोल्डन वॉइस माएस्ट्रो पापा। अति सुंदर बयान, जरा दिल को थाम लीजिए एक बार फिर। ओमदत से ओक सो मोए कान सिंग एंड सो या से स्नीत अलेन कनाप सुपर कनाप और मधुबंती बाक्षी जी को लाते हैं प्रोग्राम में एक बार फिर। एड सुपर एट मूवी धूरंधर का ये अति सुंदर बयान एंड इट इज लेक ऑम टू वेट दैट्स ऑल रिक्टिंग 819 miljoen views gaat hoor, dat is heel veel worldwide. Aur dikha jaye ki sundar bayan ko sajaya hai Shashwat Sachdev ji ne aur saath de rahi hai Madhuvanti ji ka mashhoor gaane wali aur lyrics likhak Jasmine Santlas jo ek bahut hi behtareen gaane wali bhi hai। शश्वत सचदेव ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान को लिखे हैं, क्या बात है। शरारत और मिलके थोड़ा शरारत करें ना, ग्रेट सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Beautiful song uit de film Durandar. Monsieur Ghanewali is Zamanika. Malkai Husne Malkai Sangeet the Great Madhubanti Bakshi. क्या बात है, एक से एक अति सुंदर नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स मैं आज के रात्रि के लिए सेलेक्ट किया हूँ। ये यश उम्मीद है कि आप सभी को आज का सिलेक्शन भी जरूर पसंद आते होंगे। अगला बयान एक और अति सुंदर जबरदस्त सॉन्ग है एड फिल्म धुरंधर, और कुछ लोग ने मिलके गाए हैं ये अति सुंदर बयान को। देखा जाए रेबले शाश्वत सचदेव और कुछ आशा जी और आर डी बर्मन जी के आवाजें मिक्स किया गया है, तो मिलके सुनते हैं रन डाउन द सिटी फ्रॉम द मूवी धुरंधर।

0: here in Round City, Monica, oh my darling, remix by Dekha Jai, Jyoti Deshpande, or Dekha Jai from the मूवी धुरंधर. कुछ गाने वाले हैं रेवल सरस्वती सचदेव और आवाज़ें रिमिक्स किया गया आरडी बर्मन और आयशा भोसले जी का. वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है साथियों, तो आज का मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे. एड फिल्म स्त्री ट्वे गाने वाले पवन सिंह, सिमरन चौधरी, दिव्या कुमार और सचिन जिगर है. अल्फाज अमिताभ भट्ट चढ़िया जी का कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो सचिन जिगर. आई नहीं
1: झूठी खाई थी. सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप फ्रॉम सारेगामा.
2: वो नहीं आने वाले.

क्या बात है, अति सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और ये भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के

साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। साथियों, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तांत्रिक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया दवाने डोंगली माएस्ट्रो चंद्रसेन गंगा जी। आप सभी को कुछ पुराने पुराने नगमे से सेवा करने वाला है और उसके बाद एक से एक अनाउंसर साथी आप सभी को खिदमत करने वाले हैं। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना और मुझे आप सभी इजाजत दें। हमारे बाद आप विज्ञापन सुनेंगे और उसके बाद बड़का भैया श्री मान गंगा जी आप सभी को आगे प्रोग्राम लेकर बढ़ेंगे। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ 8 बजे रात्रि को और कुछ फरमाई से लेके। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ। और ये भी महान फनकार डगड़ेत दादा हेमंत कुमार की याद में।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक गंगा और कुछ घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। जो लोग चुन की ए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से, लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2023।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 95% लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाई ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जब भी जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाए शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में यशुदास।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है। फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और सूरज, चांद और सूरज में से सलील चौधरी के साज पर।

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिल के आपको ये शानदार द्विवेद सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखो जी, हाँ भी थोड़ी समय बाकी है तो हम पेश करते हैं ये गीत। ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हालिम सुने होंगे तो एक बार सुन लीजिएगा। एवरग्रीन किशोर कुमार।

0: तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाकई आपने सुने, बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

चौहान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए। आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल, फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रफी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माइतू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार।

फनफुंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनफुंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फन हिंदुस्तानी।

अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है, क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं? अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे, जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं जी नहीं, सोनू निगम नहीं, कुमार सानू, कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने और प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियाँ लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिलके सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे। बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाए हुए गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं, आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं, बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की है, लेकिन मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ करने से चूकता नहीं है। तारीफ ही तारीफ, लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर से तारीफ की तारीफ, तारीफ ही तारीफ।

बस आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

क्या बात है, अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्में खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: और वो बड़ी अरमान से, बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तिक का, जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है। और ये गाना तो, और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया, ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का, और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।
1: माशिन आज मैं बहुत बहुत खुश हूं।

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके।

तुम तो प्यार हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी, ये गाना आपको सुनाए फिल्म शहरा का। ये फिल्म नीखती इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना नीखती नीखने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिल के सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होंद निहन शस्त्र का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते हैं।

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी परमाशी मोहम्मद

और ओ दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन नर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

0: कहां।
1: कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्राज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफ़ी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेंगे। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 55 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है हमारे दोस्तों। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का ओर, वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफ़र हो मेरे हम सफ़र, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, नेहा इन फिर का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के और हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नई गति 67 इस गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

इस पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म का नाम है यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई जिस दिन भुला दूंगी तेरी प्यार उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं ये है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में शमाई है और ये फिल्म ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे। मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और राहुल दुर्बिन के सांच में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

0: जब हम जवां हो गए और जब हम जवां हो गए तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेकत इंद्रिय तख्ता ये फिल्म है, जब हम जवां हो गए।
1: और दोस्तों प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से मां जा आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है, वो अपना हो न हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों, और हम तुरंत चलते हैं। और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों, और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा, साधना संगम सरगम है इसमें, और फिल्म के नाम है गुथ गर्स खुद गर्स। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

और आप किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेह तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं, अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकेर बेस्टेल इस्त्रात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होंगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कौर की पूछो जरा पूछो।
1: मुझे

ये दिल लगाने की सजा है दोस्तों। राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खनती सस नहीं खन तक का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों, और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आज आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यह कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं। हमारे दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है, प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा। मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा। हमारे दोस्तों, और हम चलते हैं और एक गीत की ओर। कहते हैं, मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरे।

और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी है यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामिन से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए आप क्या है,

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो, और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको शोलक फूलक करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

जी हाँ, आप चुन हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और गीत हमने निकाले हैं निकली फेहे फेफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेक इतनी फैफिन सैफिन तक नौशाद अली के साज पर। लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाएं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं, लेकिन त्वेन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

यार न कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाएं मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन। शस्त्र से हम निकाले हैं, इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तू ऐसे कहाँ, देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज, फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाजत हो तो सुना दूं, ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिलके सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिल्म अनुपमा में से निकाल कर नेकती सस्तक, और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।